सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 5:48 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: हरितिमा सचमुच प्रकृति का वरदान है। धरती पर जीवन का अस्तित्व हरितिमा यानी हरियाली के बिना असंभव है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध फल फूल, सबके मूल में हरियाली है। वनस्पति और हरियाली ही धरती को एक जीवंत ग्रह बनाते हैं और हमारे जीवन को सौंदर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक शोभा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हरितिमा से भरे वातावरण में हमें भी वह विशुद्ध हवा मिलती है जो अनेकानेक बीमारियों से हमें दूर रखने में सक्षम है। सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का स्रोत हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। आधुनिक यांत्रिक युग में हमारे चारों ओर की हवा प्रदूषित हो चुकी है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के इस दौर में जब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों को बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं, ऐसे में हरियाली की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें स्वच्छ वातावरण तो देती ही है, स्वस्थ जीवन का उपहार भी देती है। हरियाली सिर्फ हवा को ही शुद्ध नहीं करती बल्कि जलवायु का संतुलन भी बनाए रखती है। पेड़ वर्षा लाने में सक्षम हैं, वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूमि के नीचे जल के स्तर को बनाए रखने में सक्षम हैं। पेड़ों से ही जंगल बनते हैं और जंगल में विभिन्न जीव जंतु का निवास होता है। जीवों की विविधता को बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। वनों के कटने से जंगली जीवों की संख्या तेजी से घटने लगी है। वनों के कटने से बाढ़ और सूखे का भी खतरा बढ़ जाता है। हरितिमा का प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरा भरा वातावरण हमारे तनाव को कम करता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वह हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। यही कारण है कि कई बार लेखक पहाड़ों पर जाकर अपना लेखन कार्य करते थे। शोध भी बताते हैं कि हरियाली के बीच रहने वाले लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। बच्चों के विकास के लिए भी हरियाली बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हरितिमा हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में सक्षम है। वन हमें सूखी लकड़ियां, फूल फल, औषधीय जड़ी बूटियां, गोंद इत्यादि देता है। यह व्यापार का एक उत्तम साधन है। इस तरह यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसलिए वनों को काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए। हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है तथा यह सरकार की आमदनी का भी जरिया होता है। आज के इस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो हरितिमा का संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वनों को कटने से बचाना चाहिए तथा पहाड़ों को काटने पर भी रोक लगाना चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हरितिमा से ही हमारा जीवन सुंदर है। यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिसे संजोना और सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे झंडे में भी हरे रंग का प्रयोग धरती की हरियाली का प्रतीक माना गया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस धरती को और अधिक हरा भरा बनाएं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुंदर भविष्य सुनिश्चित करें।
0: ये था आज का चिंतन। हम आकर

0: आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है पशुओं के आंतरिक परजीवी एवं उनसे बचाव। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पशुपालन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पशु स्वास्थ्य की अपेक्षित देखभाल का अभाव न सिर्फ पशुओं की उत्पादकता को प्रभावित करता है अपितु कभी कभी पशुओं में अस्थायी विकलांगता और मृत्यु कारक बनकर भारी नुकसान का कारण बनता है। आंतरिक परजीवी पशुपालकों को भारी आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देश में चारागाह मिट्टी और घास परजीवियों से संक्रमित होते हैं और जब पशु घास चरते हैं तो वहाँ मौजूद परजीवी पशुओं के शरीर के भीतर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए मनुष्यों की तरह पशुओं के लिए भी ससमय आंतरिक परजीवियों का निराकरण करना आवश्यक है। पशुओं के पेट के अंदर जो परजीवी पाए जाते हैं उन्हें हम आंतरिक परजीवी एक तरह से कहते हैं और आंतरिक परजीवी जो होते हैं पशुओं को जो आप खुराक देते हैं उन खुराकों में से एक बड़ा सा हिस्सा स्वयं ले लेते हैं, जिसे आप पेट के कीड़े के रूप में आप जानते हैं। वे पेट के कीड़े यानी कि आंतरिक परजीवी पशुओं को के जो होते हैं वे जब अधिकांश भोजन का अंश जब स्वयं ले लेंगे तो पशु कमजोर होने लगता है और उसका हाजमा भी बिगड़ जाता है। आंतरिक परजीवियों से प्रभावित पशु प्रायः बेचैन रहता है। दाना पानी खिलाने पर भी उनका समुचित शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, पशु सुस्त और कमजोर होते हैं, उनकी हड्डियां तक दिखने लगती है, कभी कभी इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जब छोटे होते हैं पशु तो उनकी लंबाई कम हो जाती है और जो बड़े पशु होते हैं उनसे काम लेना आपको मुश्किल हो जाता है। इसलिए चारागाह का यथोचित प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। जहां तक संभव हो आप चारागाहों में पशुओं को चरने के लिए वहीं पर ले जाएं जहां पर वे सुरक्षित हों। परजीवियों से सुरक्षित रहने के लिए सफाई और स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। पर्याप्त हरा और सूखा चारा उपलब्ध कराकर पूरक पोषक और खनिज पदार्थ प्रदान कर स्वच्छ कवक रहित चारा और साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराकर नियमित और समय समय पर कृमिनाशक दवा देकर ये प्रबंधन किया जा सकता है। हर पशु मालिक को पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और आंतरिक परजीवियों जैसे कि गोल कृमि है, हुक कृमि है, फ्लक्स है, इन सब जीवों के बारे में जानकारी लेकर उसके लिए उचित दवा जो है वो 6 महीने पर एक बार जरूर अपने पशुओं को देते रहना चाहिए, ताकि जो अंदर परजीवी हैं या जो परजीवी पनप रहे हैं वे वहाँ नहीं रहें और जो भी आप पशुओं को दाना चारा दे रहे हैं उसका जो है समुचित उपयोग पशु कर पावें और शरीर के वृद्धि में वो योगदान दे सकें, क्योंकि इससे जो है पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं जब आंतरिक परजीवी होते हैं पेट में और उसके बाद कुछ रोग भी हो जाते हैं। रोग तरह तरह के होते हैं, जैसे पशुओं का मल जो है पतला निकलने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगती है, जैसे कृमि रोग है, छेरा रोग है, यकृत यानी कि लीवर की बीमारी है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं और तरह तरह के इसमें लक्षण भी होते हैं। कभी कभी तो खूनी दस्त भी हो जाता है जिसे कोक्सीडियोसिस कहते हैं। ये गाय भैंस बकरी घोड़ा सुकर और मुर्गा में भी होता है। इसमें जो है पशुओं का वजन भी कम हो जाता है और लाल रंग के मूत्र और मल में जो है पदार्थ आने लगते हैं। हुक कृमि के कारण भी वजन में कमी आती है और इसके लिए साधारण सी दवाई आती है जो आदमी के पेट में कृमि होता है उसमें जो दवा प्रयोग की जाती है वहीं पशुओं में भी की जाती है, लेकिन उसकी मात्रा कुछ बढ़ानी होती है। कोई भी दवा आप जब अपने पशुओं को दें कृमिनाशक या किसी तरह की, तो पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर करें, क्योंकि बिना उनकी सलाह पर यदि आप दवा का प्रयोग करेंगे तो संभव है कि हानि हो जाए लाभ के बजाय। तो इसलिए पशु पालकों को चाहिए कि पशु चिकित्सक के संपर्क में बराबर बने रहें।
0: पशुओं के आंतरिक परजीवी एवं उनसे बचाव इस विषय पर

0: अरे जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास साहब। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा।

0: आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

भजन। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। और विश्वास में इतनी शक्ति है कि इससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।

इस भजन के साथ ही वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर है वाणी जयराम का।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: डॉक्टर विद्याभूषण कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं IGIMS पटना के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्याभूषण कुमार साहब, और हम इनसे बातें करेंगे आंखों की नियमित जांच जरूरी। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर। सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज आंखों की नियमित जांच के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी जो गार्जियन हैं, जिनके बच्चे जैसे 3 साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनका हमेशा जांच, स्कूल जाते हैं तो स्टार्ट एक बार जरूर नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बताते नहीं हैं कि उनको दिखाई दे रहा है या नहीं। और जब टीचर वहां से स्कूल से भेजते हैं तब तक बच्चों में बहुत ज़्यादा पावर की कमी हो जाती है और उनको परेशानी होती है ज़्यादा, फिर उसमें चश्मा लगाना पड़ता है। या वैसे बच्चे जिनके आँखों में तिरछापन है, या तो फिर आँख में से कुछ ऐसा रिफ्लेक्स जो नॉर्मल रिफ्लेक्स की तरह काला नहीं आ रहा है, सफ़ेद रिफ्लेक्स आ रहा है, वैसे बच्चों को भी हमेशा चेक करवाना चाहिए गार्जियन को। दूसरे जो वयस्क हैं, युवा हैं, जो 35 से 40 साल के उम्र के हैं, उनको भी अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, क्योंकि उनका नजदीक में जो होता है जो रोशनी कमना शुरू हो जाता है और उनको परेशानी होती है काम करने में, मोबाइल देखने में, आजकल बहुत सब मोबाइल यूज करते हैं तो, या तो अखबार पढ़ने में भी दिक्कत होती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास दिखवाने के लिए, तो हमेशा उनसे बोलिए कि हमारे आंखों में काला मोतियाबिंद है कि नहीं, इसका भी जांच कर लें, क्योंकि 35 से 40 साल की उम्र में काला मोतियाबिंद होने की संभावना शुरू हो जाती है। या तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता को काला मोतियाबिंद है, या तो माइनस पावर बहुत ज्यादा है, तो उनको भी हमेशा नियमित जांच में हमेशा काला मोतियाबिंद का भी जांच करवाना चाहिए। अधेड़ व्यक्ति जो और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। और मेनली जिनको मुख्यतः डायबिटीज है या हाई बीपी का बीमारी है, या तो और कोई भी शरीर में कोई बीमारी है जिसके चलते आंख में भी दिक्कत हो रहा है, तो उनको भी जांच करवाना चाहिए। और जांच करवा करके जैसे 50 साल से ऊपर जाते हैं तो उनमें मोतियाबिंद फिर होना शुरू हो जाता है, जो जिसका कि सर्जरी करके हम लोग और लेंस डाल के उसको अच्छा से रोशनी वापस लिया जा सकता है, तो उसको लेट नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ को जांच करना जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों के बारे में बता रहे हैं, बच्चों
2: जी
1: में आप बता रहे हैं स्कूल जाने के समय
2: जी
1: जांच होनी चाहिए 3 साल की उम्र में, कुछ बच्चों के आंख में भेंगापन होता है
2: जी
1: या उनको कुछ दिक्कत होती है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं,
2: जी
1: तो इस तरह के बात को कैसे माता पिता समझ पाएंगे और कैसे उनका इलाज हो पाएगा, इसके बारे में
2: जी
1: बताइए।
2: भेंगापन 2 तरह का होता है सर। एक तो है कि बच्चों में ऑब्वियसली दिखता है, जब बच्चा को सामने देखने के लिए बोलते हैं तो उसका आंख तिरछापन रहता है। बच्चों में जब आंखों में तिरछापन है, या तो उसको भेंगापन बोलते हैं सर, उसका उपचार के लिए पहले तो उसका बीमारी है वो पता चलना चाहिए गार्जियन को कि है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप नेत्र चिकित्सक से मिल करके गार्जियन को दिखवाना चाहिए कि आंख में रोशनी है जो कि प्रॉपर जितना चाहिए बच्चों का, जैसे नॉर्मल विजन होता है इसको 6x6 बोलते हैं, उतना है कि नहीं। अगर है तो आंख जो देखता है बच्चा, जो आंख सीधा करके देखता है कि तिरछा करके देखता है, तो वो प्रॉपर जाँच करने के बाद पता चल जाता है सर। अगर वैसा भेंगापन बच्चों की आंखों में होती है तो उसका उपचार अभी संभव है। पहले हम लोग उसको चश्मा देते हैं, चश्मा से भी आंख में सीधापन आ जाता है। अगर चश्मा से सीधापन नहीं होता है तभी हम लोग सर्जरी के ये उस बच्चे को एडवाइस करते हैं सर।
1: जी अच्छा, एक सामान्य लक्षणों के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता दें आप, कि जैसे आंखों की नियमित जांच के बारे में तो आप बता ही रहे हैं,
2: जी
1: लेकिन कुछ ऐसे लक्षणों की चर्चा करें जिससे लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी आंखों में कोई तकलीफ है और उनको तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए।
2: बच्चों में तो अगर बच्चे को प्रॉपर खेलने में परेशानी हो रही है, चाहे तो जो बहुत छोटा बच्चा है जिसको कि मतलब अपने माँ पिताजी को फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग में दिक्कत है तो पता चल जाता है, गार्जियन उससे देख सकते हैं।
1: और बड़े
2: जो
1: लोगों का
2: वयस्क लोग हैं, तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के बाद थोड़ा सा थकावट लगता है आँख में, या तो आँख के चारों तरफ, या तो सर दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा जाँच कराना चाहिए। जब ड्राइविंग करते हैं तो दूर की वस्तु, चाहे तो सिग्नल देखने में परेशानी हो रही है, कलर में तो कलर ब्लाइंडनेस एक अलग चीज़ है, उसका तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल जो रोशनी कम होती है तो दूर देखने में परेशानी होती है, आगे जो ड्राइविंग कर रहे हैं तो आगे की गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, या तो आगे गाड़ी में देखने में परेशानी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको चेक करवाना चाहिए सर।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आंखों की नियमित जांच के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
0: आंखों की नियमित जांच जरूरी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विद्याभूषण कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें आज आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है आंखों की नियमित जांच जरूरी। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं

सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। 7:15 पर आप सुनेंगे तनु गांगुली की आवाज में कुछ गीत और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शहनाई वादन उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों से सुबह 7:25 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन पेश करेंगे सुबह 9:10 पर। रस मंजरी कार्यक्रम में आप फिल्म संगीत का आनंद उठा सकते हैं सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार कल्याण। कार्यक्रम में आज का विषय है माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आधार। और दिन के 11:00 प्रस्तुत करेंगे ऑन एयर फरमाइश फोन इन कार्यक्रम।

दोपहर 12 बजे का समय है, कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोक गीत। कलाकार होंगे कुंदन कुमार और मोनिका राज। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरणी का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर।

ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर, और शाम 7 बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

8 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गजल हरिहरन की आवाज में।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा। पहले सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी समाचार। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंतम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष

0: वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1,000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2,700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कॉन्गो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल।

1 जुलाई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए। तो सबसे पहले इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन 1858 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1968 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का गठन किया गया। वहीं 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST लागू हुआ, जिसने भारत की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। और श्रोताओं, बात करें आज के दिन जन्मे महान व्यक्तियों की, तो 1 जुलाई 1882 को प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। और संयोग देखिए कि उनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को ही हुआ। इसी कारण भारत में आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्हें राजश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न से भी सम्मानित थे, वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने वाले प्रमुख समर्थकों में से एक थे। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं और पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे। इनका निधन आज ही के दिन 1962 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इसके अलावा श्रोताओं, बात करें आज कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जैसा कि हमने बताया आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आज 1 जुलाई से ही एक सप्ताह के लिए वन महोत्सव की भी शुरुआत होती है। और आज के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेगे दिवस और जैसा कि हमने बताया 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत भी आज से होती है। श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सूचनाएं जानकारियां और भी हैं, लेकिन पहले सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

और श्रोताओं, देखिए, अब थोड़ी सी बात अगर हम हेल्थ की करें तो आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, ठीक रखने के लिए हमें अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम योग को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं, या नहीं तो हम रोज़ तकरीबन आधे घंटे की वॉक या जॉगिंग कर सकते हैं। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आप उचित आहार का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, और स्वस्थ रहें। और सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

0: आने की जब बात होती है ना, तो जब हम प्रकृति के पास जाते हैं और हरियाली अपने आसपास देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत खुश हो जाते हैं। प्रकृति हमारा।
1: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए तनु गांगुली की आवाज में कुछ गीत।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तनु गांगुली की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज आपको सुनवा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं उस्ताद

बिस्मिल्लाह खां और साथी, इनसे हम सुनेंगे राग मियां की तोड़ी। तो लीजिए सुनिए, शहनाई वादन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों से राग मियां की तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों से शहनाई वादन राग मियां की तोड़ी।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप

0: फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के

0: बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
0: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

0: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India

0: will win against Sweden. In the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Mbappe is struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Antonio Nusa scored in the 39th minute to give Norway the lead, but Ivory Coast's Amad Diallo equalized in the 74th minute. However, Erling Haaland 86-minute goal secured Norway's spot in the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 national series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बातचीत की और मग़रिबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई ताइकिची भारत के तीन दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुँच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।

0: वीबीजी रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तसव्वुर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी काम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निज़ाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपये रोजाना की उजरत आर्जी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपये थी, जिसे अब वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपये रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकेलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेर निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी है, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं है, सिख भी है, तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
1: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदामात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन

0: पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेर कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादले ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैन अलाक़वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनक़िद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्र आज़म।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नव निर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि जी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है।

0: योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख रुपए तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में विधानसभा कोटे से नव निर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद उपभवन सभागार में होगा। सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित कुल 10 सदस्यों में से 8 पहली बार सदन की सदस्यता लेंगे। इनमें निशांत कुमार, अनिल ठाकुर, शिवरानी प्रजापति, ललन कुमार, अशरफ अंसारी, शीला पंडित और पवन सिंह शामिल हैं। वहीं भाजपा के संजय मयूख और राजद के सुनील सिंह पहले भी सदन के सदस्य रह चुके हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो गया है। नए कैलेंडर के अनुसार स्नातक कक्षाओं के 8 सेमेस्टर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लोक भवन ने अपरिहार्य परिस्थिति में कुछ विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र कार्यक्रम में 1 सप्ताह की छूट दी है। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट।
1: मानसी सहरसा खंड वर्तमान में एकल रेल लाइन है, जहां यात्रियों और मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है। इस मार्ग पर प्रतिदिन 24 जोड़ी यात्री ट्रेनें संचालित होती हैं। साथ ही खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, रेत और पत्थर जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई भी इसी रेलखंड से की जाती है। रेलवे के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद रेल यातायात अधिक सुचारू होगा, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा और परिचालन दक्षता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही हर वर्ष लगभग 17,64,000 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जिससे कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: पटना सिटी के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के शेष निर्माण को निर्बाध पूरा कराने के लिए आज से अगले आदेश तक यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्माणाधीन पुल पर पिलर संख्या 23 और 67 के बीच तेजी से कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर और कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पर रोक लगाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश भर में मानसून का विस्तार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता से अगले एक सप्ताह तक राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, पश्चिम चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 1 जुलाई।

0: राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर विभाग के अनुसार जून महीने में 23 जिलों में सामान्य से 50 फीसदी कम बारिश हुई है। गया जिले में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में प्रदेश में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। बिहार कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए निदेशक बनाए गए हैं। श्री कुमार वर्तमान में CRPF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान SPG निदेशक आलोक शर्मा का कार्यकाल 21 मार्च 2027 को पूरा होने के बाद अमित कुमार निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल श्री कुमार को SPG में OSD के रूप में तैनात किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में ईमेल अपडेट करने की सुविधा को निशुल्क कर दिया है। यह सुविधा आज से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति आधार मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले इस सुविधा के लिए ₹75 का शुल्क निर्धारित था। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये विषय उन डॉक्टरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से T20 क्रिकेट श्रृंखला शुरू हो रही है। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आज टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने की संभावना है। वैभव को संजू सैमसन या ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि आयरलैंड के खिलाफ दो टी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला के दौरान वैभव सूर्यवंशी को अवसर नहीं देने को लेकर टीम चयन पर सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी के दौरान वांछित अपराधी पांडव गिरोह के मुख्य सरगना संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दानापुर के SDPO अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर हत्या और रंगदारी समेत 26 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई तक 9 टीमें नगर निगम क्षेत्र के सभी 6 अंचलों में अतिक्रमण और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पहली बार एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू, नया सत्र आज से, जनवरी में सम सेमेस्टर की पढ़ाई। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है VBG रामजी में न्यूनतम मजदूरी अब ₹300 से कम नहीं होगी। प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है मौसम की मार, 15 के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार। दैनिक भास्कर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को नुकसान नहीं। अखबार लिखता है E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय सागर ने मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वास भूमि प्रमाण पत्र। आज अखबार के शब्द हैं 18 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामची अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15-25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नव निर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

Akashwadi at 90. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

नहीं समझ सकते। वो एक ऐसा पुल है जो दक्कनी और शुमाली हिंद की अदबी रिवायात को आपस में जोड़ते हैं। वली की यही वो इनफरादियत है जिसने उन्हें दीगर शुअरा से मुमताज़ कर दिया। उनके कलाम की कद्र मंजिलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 18वीं सदी ईस्वी में दीवाने वली के कलमी नुस्खे जिस कसरत से मुल्क में तैयार हुए उतनी कसीर तादाद में किसी और उर्दू शायर के नहीं हुए। ये कलाम वली की इंतहाई मकबूलियत की दलील है। बहुत से शुआरा ने दीवाने

ढूंढने उसको चला हूँ जिसे पा भी ना सकूँ। शायर इसके अंदर अपने इश्क और उसकी इंतहाई कैफियत का नक्शा नहायत ही पुरअसर अंदाज में खींचा है, और शायर ये कहता है कि उसके दिल में एक ऐसी आरजू है, एक ऐसी तमन्ना है जिसे वो भुलाना चाहता है लेकिन भुला भी नहीं पाता है, और उसका जख्म उसकी एक पहचान बन गई है। और फिर शायर ये चाहता है कि इस कैद से अपने आप को आज़ाद कर लें, उससे छुटकारा मिल जाए, ताकि मुझे जो दर्द है, कैफियत है, कसक है, उसे निजात मिल जाए। लेकिन उसकी ज़िंदगी का ये नक्शा और उसकी ज़िंदगी के अंदर ये एक नासूर बन करके उसे हमेशा परेशान करता रहता है। तो शायर इन दोनों के दरमियान एक ऐसी कैफियत में मुबतला है जहाँ न उसे वसल नसीब होता है और न ही उसे गम से नजात मिलती है। इसी वसल और नजात के दरमियानी कश्मकश में इंसान मुबतला है, और ये शिकवा कुना है कि उसकी मोहब्बत ने उसे परेशान भी कर रखा है और उसे मंजिल से दूर भी कर रखा है। तो शायर अपनी दिली कैफियत को इसमें जो बयान किया है, यकीनन ये शायर के दिली जज्बात हैं, और ये जज्बात इंसानी फितरत का एक ऐसा खासा है कि जो शख्स इस मरहले से गुज़रता है उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मराहिल आते रहते हैं, लेकिन इस कश्मकश में, अधूरी मोहब्बत में, अधूरी ख्वाहिश में इंसान को एक नया लुत्फ और एक नई कशिश भी महसूस होती है। तो सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू पुराम अंजुमन अब यहीं अख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। फिर मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ और ख़ूबसूरत पुराम के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं रसमंजरी।

श्रोताओं, रसमंजरी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पहला गाना शादी के लाइ साइड इफेक्ट फिल्म से। इसे आवाज़ दी है मोहित चौहान ने, स्वानंद किरकिरे ने इसके गान बोल लिखे हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

आइए सुनते हैं अगला गाना बॉर्डर टू फिल्म से सुफिंदर सिंह की आवाज में कुमार के बोल, और इस गाने की धुन बनाई है मिथुन ने।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे क्वीन फिल्म का गाना। अनविता दत्ता के बोल पर इस गाने की धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं रसमंजरी और कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गाना। शेखर रवि जैनी और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अनजाना अनजानी फिल्म से ये गाना हमने लिया है। विशाल शेखर ने इस गाने की धुन बनाई है और बोल हैं विशाल ददलानी के।

और आइए अब सुनते हैं अगला गाना पापुन और सुनिधि चौहान की आवाज़ में बर्फी फिल्म से। नीलेश मिश्रा के बोल हैं और इस गाने की धुन बनाई है प्रीतम ने।

आशुतोष, खूबसूरत से गाने के बाद अगला गाना हमने ट्यून किया है इंग्लिश वंग्लिश फिल्म से, शिल्पा राव की आवाज़ में। इस गाने को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और म्यूजिक कंपोजर हैं अमित त्रिवेदी।

0: और शतान इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम परिवार कल्याण। कार्यक्रम में आज का विषय है माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार। इस विषय पर डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति से बातचीत कर रहे हैं चंद्रमणि कुमार सिन्हा।
1: नमस्कार श्रोताओं, परिवार कल्याण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति, जो कि MBBS MD हैं और शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ हैं। आज का हमारा विषय है माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, हम जानना चाहेंगे कि जब स्तनपान कराया जाता है तो वो कब कराना चाहिए? शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद होना चाहिए या कुछ घंटों पश्चात होना चाहिए? कब तक ये जारी रहना चाहिए? तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: जी सर, एक्चुअली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माँ का स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन से हुआ बच्चा हो। हम एडवाइस करते हैं कि आप जितनी जल्दी कोशिश करें बच्चे को स्तनपान शुरू कराएं, क्योंकि जो माँ का पहला दूध निकलता है जिसको कि हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो हल्का पीला पदार्थ होता है, लिक्विडी होता है, थोड़ा गीला गीला, उसको पिलाने से बच्चे का जो इनिशियल हम देखा गया है आगे की साइंटिफिक स्टडीज़ जो की गई उससे पता चला है कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्तनपान ज़रूरी है। आधे घंटे से एक घंटे के अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि ये शुरू कर दिया जाए।
1: कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो तुरंत दूध का स्राव नहीं होता है,
2: जी
1: कुछ घंटे लगते हैं, या होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पैकेट का जो दूध होता है अथवा बाहर का दूध होता है वो बच्चों को पिलाते हैं, तो क्या इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
2: देखिए, माँ का दूध तो जैसे बनता है हम उस तरह से बच्चे को उसी हिसाब से पिलाया जाता है। फॉर्मूला फीड हम कोशिश करते हैं अवॉइड करते हैं कि बच्चे को ना दिया जाए, लेकिन अगर बच्चे का ग्लूकोज लेवल नापने के बाद कम होता है या ऐसी कुछ उनमें समस्याएं देखते हैं तो हम फॉर्मूला फीड पर शिफ्ट होते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना चाहिए। अगर माँ का दूध नहीं बन रहा है तो बच्चे को छाती से लगाने से या बच्चे के रोने से, प्रकृति ने इस तरीके का बनाया है, संरचना ऐसी की है कि माँ का खुद ब खुद दूध का स्त्राव होने लगता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट होना पड़े।
1: जी, तो कब तक ये जारी रखा जा सकता है? सामान्यतः बोला जाता है कि 6 महीने तक तो केवल माँ का ही दूध चलना चाहिए,
2: जी
1: मगर शहरों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि माएँ उतना देर तक दूध नहीं पिलाती हैं और सामान्य भोजन की तरफ तुरंत आ जाती हैं।
2: जी मैं ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि इनिशियल 6 महीने जो बच्चों के जन्म का होता है उस दौरान ब्रेन डेवलपमेंट बहुत सबसे तेज़ी से होता है, विकास, जो दिमागी विकास है वो काफ़ी जल्दी होता है, और माँ का दूध अपने हिसाब

0: हिसाब से बढ़ते उम्र के साथ अपनी जो कंपोजिशन है वो चेंज करता रहता है। जैसे प्री मच्योर बेबीज हुए तो माँ का दूध उस हिसाब से चेंज होगा, उसमें ज़्यादा फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब होते हैं, आयरन। इसलिए इनफैक्ट यहाँ तक जो बच्चे पूरी तरह से स्तनपान पर निर्भर हैं उनको तो मल्टीविटामिन्स हम एडवाइस भी नहीं करते हैं, इतना संपूर्ण है, पूर्ण आहार है। तो इनिशियल 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट फूड है। और आप जब 1 साल तक, 1.5 साल तक आप बच्चे को धीरे धीरे करके वीनिंग करके आप अपने घर में जो भी आपका खाना बनता है उसको गीला आहार बना के माँ के दूध के साथ उसको धीरे धीरे करके आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के बाद, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि माँ का दूध संपूर्ण आहार है बच्चों के लिए, तो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए माँ का दूध किस प्रकार से काम करता है और किस तरीके से विकास होता है बच्चों का?
0: जी, इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। जैसे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों को ज़्यादा दिन तक दूध पिलाया गया या सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तक रखा गया, वो बच्चे आगे चल के काफ़ी होशियार और बुद्धिमान निकले हैं। उनकी IQ भी बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा पाई गई है। उनमें एलर्जिक जो बीमारियां होती हैं जैसे कि एक्जिमा हो गए, एस्थमा हो गए, या फिर डायरल डिजीजेज हो गए, या जो पेट संबंधी बीमारियां हैं वो कम पाई जाती हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे जो दांतों की समस्या है, डेंटल केरीज वगैरह, या स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, चमड़े की बीमारियां, वो भी कम पाई जाती हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक कम से कम दूध पिलाएं और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: तो मैडम, अभी जैसा कि हम अभी अभी ही कोविड काल से गुजरे हैं,
0: जी
1: तो कोविड काल में बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को तो खैर मना था, मगर महिलाओं को दिया गया था कोविड वैक्सीन। तो जब वो बाद में गर्भवती हुए हैं, तो बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा उस कोविड वैक्सीन का? बहुत सारे स्टडीज ऐसे आए होंगे, इस पर
0: जी
1: थोड़ा बताइएगा।
0: जी कोविड वैक्सीन जिन भी महिलाओं को दिया गया था, गर्भवती नहीं, महिलाओं को दिया गया था, वो आगे चल के जब उन्होंने गर्भ धारण किया, उनके जो बच्चे हुए, चूंकि माताओं का वैक्सीनेशन पहले हो चुका था, तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनी वो स्तनपान के साथ साथ बच्चों में जब आई, तो उससे बच्चों का कोविड के प्रति इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। इस वजह से उन बच्चों में देखा गया कि कोविड की जो इन्फेक्शन थी वो दर काफ़ी कम पाई गई थी, कंपेयर टू जो अगर आप उनकी तुलना करें उन बच्चों से जो कि दूध ना माँ का दूध नहीं पिए गए थे। इसलिए कोविड इन्फेक्शन रेट उनमें काफ़ी कम थी।
1: क्या ये बच्चों को माएं जो सामान्यतः दूध नहीं पिलाती हैं, तो क्या बच्चों में पेट के संबंधी समस्याएं अथवा मानसिक विकार कुछ वैसे भी उत्पन्न हो सकते हैं क्या?
0: देखिए, स्टडीज़ जो की गई हैं वो ये बताती हैं कि इनका बचाव कितने हद तक है, मतलब कि जो आप इन्फेक्शन रेट कह सकते हैं कि बीमारियों की जो इन्फेक्शन रेट होती है, कि एस्थमा, एलर्जी, कुछ कुछ बचपन के कैंसर जैसे कि लुकीमियाज, ये सारे के सारे कम होते हैं उन बच्चों में जिन्होंने स्तनपान किया हो और थोड़े लंबे समय तक किया हो, 6 महीने के बाद भी आप कह सकते हैं। ये सारी जो समस्याएं, एक्जिमा और डायरिया वगैरह जैसा कि आपने कहा, ये सारे उन बच्चों में थोड़ा ज्यादा है जिन्होंने स्तनपान नहीं किया है माँ का।
1: शहरों में आजकल जो जीवन शैली बनी है उसमें माएँ अपने फिगर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और चाहते हैं कि बच्चों को कुछ ही दिन तक दूध चलाते हैं और फिर नॉर्मल भोजन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि स्तनपान कराने से अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आपके फिगर पे कोई असर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हो तो आपका हार्मोन जो है वो कंट्रोल में रहता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस कम रहता है माताओं में, प्लस उनका अपने बच्चों से रैपोर्ट बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे और माँ के दो आत्माओं के बीच में एक मिलन होता
1: भावनात्मक
0: है,
1: लगाव जो
0: भावनात्मक
1: होता
0: लगाव
1: है।
0: होता है। जी बिल्कुल, तो उस तरीके से ये महिलाओं, नई नई माताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद है, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसलिए स्तनपान मेरे हिसाब से नई माताओं को बिल्कुल कराना चाहिए और पूरे ड्यूरेशन 6 महीने का जो हम सजेस्ट करते हैं उसमें कराना चाहिए। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी है लंबे समय के लिए।
1: स्तनपान के साथ साथ कितना बार यह भी देखा जाता है कि गाय का दूध भी बच्चों को दिया जाता है, तो वो कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए? दोनों का क्या होना चाहिए अंतर?
0: 6 महीने तक तो माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपके डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं जैसे कि विटामिन D3 वगैरह देते हैं तो वो आप पिला सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद घर में जो भी भोजन बनता है जैसे कि केले हो गए, दाल हो गई, अंडे हो गए, ये सब आप मैश करके यानी बिल्कुल महीन करके उसको धीरे धीरे बच्चे के खाने में शामिल करें। माँ का दूध कंटिन्यू जरूर

0: करें, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी जो आप बार बार उसको जितनी बार पिलाती हैं वो कम करें, और बच्चे को घर के आहार पे रखें। कुछ भी फैंसी खाना देने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से बहुत महंगी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जो घर में बनती हैं सुपाच्य चीज़ें वो आप उनको दें और महीन स्थिति में पीस के दें, और धीरे धीरे करके उनको घर के आहार पे, घर में बने हुए आहार पे शिफ्ट करें, और धीरे धीरे करके माँ का जो दूध है वो कम करते जाएं।
1: जी डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति, आप हमारे स्टूडियो आए और बच्चों को माँ का दूध किस तरीके से लाभकारी होता है इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: परिवार कल्याण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार, इस विषय पर डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति से बातचीत कर रहे थे चंद्रमणि कुमार सिन्हा। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए एक अंतराल के बाद।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मेडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले। कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की साहित्यिक धरोहर।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के आओ साथ चले के इस विशेष अंक में। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया को ज्ञान, आध्यात्म और वैचारिक क्रांति की जरूरत पड़ी है, तब देश के पूरब से एक सूरज उगा है जिसे हम बिहार कहते हैं। लेकिन बिहार सिर्फ साम्राज्यों, नालंदा के खंडहरों या गंगा के घाटों का नाम नहीं है। बिहार नाम है उस चेतना का जिसने शब्दों को धार दी है, जिसने लोक संस्कृति को अमर किया और जिसने हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका के माध्यम से पूरे विश्व के साहित्य को समृद्ध किया। बिहार की साहित्यिक यात्रा इतनी प्राचीन है कि इसके पन्ने पलटते ही माँ सीता की जन्मभूमि मिथिला याद आ जाती है। इस मिथिला की कूख से 14वीं सदी में ऐसे महाकवि का जन्म हुआ जिनकी रचनाओं के बिना भारतीय साहित्य का श्रृंगार अधूरा है। जी हाँ, मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति। विद्यापति ने जब राधा और कृष्ण के प्रेम को अपनी पदावली में पिरोया तो वह सिर्फ कविता नहीं, वह प्रार्थना बन गई। कहते हैं कि उनके गीतों से रीझ कर स्वयं भगवान शिव उनके घर उगना बनकर चाकरी करने आ गए थे। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आनी मिलाउल, खिति तल लावनी सार।

लेकिन बिहार की ये साहित्यिक जमीन सिर्फ एक रंग की नहीं है, ये सतरंगी है। जहां एक तरफ मिथिला के लोकगीत गूंज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार सूफी संतों और संतों की वाणी से महक रहा था। मनेर शरीफ के हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी के पत्र हों या कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाते संत, बिहार ने हमेशा साझी संस्कृति यानी गंगा जमुना तहजीब को शब्दों का जामा पहनाया। वक्त बदला, देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, तब बिहार की साहित्यिक चेतना ने कलम को तलवार बना दिया। सिमरिया बेगूसराय की मिट्टी से एक ऐसा कवि उठा जिसकी हुंकार से अंग्रेजों का सिंहासन डोल उठा। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जी के काव्य में जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसी रचनाओं में क्रांति का उग्र स्वर था, वहीं उर्वशी में प्रेम का अत्यंत कोमल रूप भी था। जब उन्होंने लिखा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रथ का, धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सिर्फ कविता नहीं आजाद भारत का घोषणा पत्र बन गया। दिनकर जी ने जहाँ वैचारिक क्रांति की बात की, वहीं पूर्णिया के औराही हिंगना गांव से एक ऐसा कथा शिल्पी उभरा जिसने हिंदी साहित्य को पहली बार आंचलिकता के रस से सराबोर कर दिया, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोसी के अंचल की सिसकी, उसकी हंसी, उसके लोकगीत, उसकी सादगी और उसके संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। कमली बावनदास

और डॉक्टर प्रशांत जैसे पात्रों को रचकर रेणु ने साबित किया कि साहित्य महलों में नहीं धूल धूसरित गांवों की पगडंडियों पर पलता है। उनकी कहानी तीसरी कसम पर बनी फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा का गौरव है।

श्रोताओं, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी है और अजीमाबाद का उर्दू अदब में वही मर्तबा है जो दिल्ली और लखनऊ का रहा है। शायद अजीमाबादी ने जब अपने गजलों से उर्दू दुनिया को दीवाना बनाया तो अजीमाबाद का नाम अमर हो गया। उनका एक शेर आज भी जिंदगी का फलसफा बयां करता है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। और हम कैसे भूल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के उस अमर गीत को जिसके रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि हुंकार इसी पटना की धरती से उठी थी, जिसने भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में देशभक्ति की आग सुलगाई थी। बिहार का साहित्य हमेशा सत्ता से सवाल करता रहा है। जन कवि बाबा नागार्जुन, जिन्हें मैथिली में लोग यात्री कहते हैं, जिन्होंने तरौनी दरभंगा से निकलकर पूरे देश के जनमानस की आवाज को अपनी कविताओं में ढाला, वे जितने बड़े मैथिली के लेखक थे उतने ही बेबाक हिंदी के कवि थे। शोषितों, पीड़ितों और किसानों के हक में बाबा की कलम हम

0: हमेशा चलती रही। उसी तरह आचार्य शिव पूजन सहाय, जिन्हें साहित्य का मसीहा कहा जाता है, उनके उपन्यास देहाती दुनिया ने भाषा को एक नया ठेठ गवई मिजाज दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें आज भी रेखा चित्र विधा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। श्रोताओं, बिहार का साहित्यिक धरोहर सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये निरंतर बहने वाली गंगा की तरह गतिशील है। आज भी भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी लोक भाषाओं में कबीर और भिखारी ठाकुर की परंपरा जीवित है। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके विदेशिया और गबर घिचोर जैसे नाटकों ने समाज के यथार्थ और विस्थापन के दर्द को जिस तरह समेटा, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। आज के दौर में भी बिहार के युवा लेखक, कवि और रंगकर्मी देश विदेश में अपनी लेखनी का परचम लहरा रहे हैं। चाहे वह समकालीन कविता हो, उपन्यास हो या सिनेमा की पटकथा, बिहार की मिट्टी का स्वाद, उसकी सोच और उसका जुझारूपन हर जगह उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रोताओं, बिहार की साहित्यिक यात्रा ज्ञान के उस दीप स्तंभ की तरह है, जिसने समय की हर आंधी में खुद को जलाए रखा, जहां शब्द में मिठास भी है और अन्याय के खिलाफ विरोध की आग भी। यहाँ की माटी में जो रस है, वही यहाँ के साहित्य की जान है। चलते चलते बस इतना कहूंगी कि जब तक दुनिया में शब्द रहेंगे, भावनाएं रहेंगी और समाज को बदलने का जज्बा रहेगा, तब तक बिहार का साहित्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के आओ साथ चले में बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, विषय था बिहार की साहित्यिक धरोहर।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए, पेश है ऑन एयर फरमाइश, फोन इन कार्यक्रम।

0: ऑन एयर फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स तो आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। ऑन एयर फरमाइश।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते सर
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताइए।
1: हम नीलू बात कर रहे हैं, मधुबनी प्रखंड खुटौना से। बहुत अरसे के बाद कॉल किए हैं हम, बहुत पहले कॉल किया था।
0: बहुत पहले? बहुत पहले यानी सालों पहले?
1: सालों पहले बीच में तो मुझे इतना अरसा बीच में निकला, शादी हुई, बच्चे हुए, घर द्वार सब उलझ के रह गए
0: और हमें भूल गए।
1: नहीं सर, भूले नहीं, दोबारा कॉल किए ना।
0: बहुत अच्छा लगा इतने लंबे अंतराल के बाद आपने याद रखा और कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बताइए कि इतने दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपके लाइफ में।
1: डेवलपमेंट क्या होगा सर, प्राइवेट जॉब करते थे वो छोड़ दिए, शादी हो गई, अपना नया फैमिली नई दुनिया लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।
0: शहर बदल गया या उसी शहर में है?
1: शहर बदल गया, सीतामढ़ी शादी हुई है मेरी।
0: अच्छा चलिए, मधुबनी से सीतामढ़ी चले गए।
1: मधुबनी से सीतामढ़ी चले गए।
0: ठीक है ठीक है, चलिए उत्तरी बिहार में रहे। तो ये बच्चे कितने हैं अभी आपके?
1: जी एक ही बेटी हुई अभी।
0: कितनी बड़ी है?
1: सिर्फ 4 महीने की।
0: ओह अच्छा, तो बहुत छोटी है अभी, अभी आप माँ बनी हैं। चलिए आपको बहुत सारी बधाई, छोटी सी प्यारी सी बच्ची आपकी गोद में आई, बहुत अच्छा। पूरे परिवार में किलकारी गूंजी होगी, बच्ची की खुशियां होंगी अभी। तो फिर अब क्या क्या हो रहा है?
1: अब अभी तो कुछ दिन घूमने फिरने मायके आए हुए हैं, और हम अपने जनरेशन में सबसे बड़े औलाद होने

0: वजह से ही पहली बच्ची है। हाँ
1: अच्छा, तो इसको भी वही प्यार मिल रहा होगा, ये बल्कि ज्यादा मिल रहा होगा जो आपको मिला।
0: हाँ क्योंकि इस जनरेशन की पहली औलाद है ये।
1: जी, तो सबके हाथों हाथ इधर उधर बच्चे की खुशियाँ बांट रहे
0: हाँ
1: होंगे
0: ऐसा ही
1: पूरा
0: कुछ।
1: परिवार मिलकर। बहुत अच्छा, समझ सकते हैं। तो
0: हाँ
1: चलिए, इसमें आप मजबूत होंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही होंगी और आगे भी निभाइएगा।
0: हाँ पक्का।
1: ये बहुत अच्छा काम किया आपने, रेडियो सुन रही हैं और कॉल किया आपने। आपको क्या सुनने का मन है आज?
0: क्या सुनने का मन है? वो एक गाना था बहुत मतलब कन्हैया कोई मुरली की तान सुना दे मेरे तन मन में आग लगा दे, था ना?
2: सत्य।

0: किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो।

0: जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी।
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझे कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दूं मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा।
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं?
1: गुरुआ से बोल रहे हैं सर, गया जिला से।
0: क्या नाम हुआ आपका?
1: ललन चौधरी।
0: ललन चौधरी जी, स्वागत है आपका। क्या हालचाल है बताइए, क्या हो रहा है उधर?
1: हालचाल तो ठीक है सर। अभी तो सर 4 महीना ड्यूटी मिलता है नहर में, बाकी दिन बैठ जाते हैं सर।
0: तो 8 महीना फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे कैसे चलता होगा?
1: 8 महीना सर रोजगार अपना करते हैं।
0: हाँ, यही कह रहे हैं कि 8 महीना अपना कुछ ना रोजगार तो होता होगा।
1: हाँ, नीरा वाला रोजगार है सर, नीरा के रोजगार।
0: अच्छा अच्छा नीरा नीरा अच्छा, उसमें कुछ सरकारी छूट और पैसे वगैरह कुछ मिलते हैं क्या आपको, या कहाँ उसको बेचते हैं?
1: हाँ सर मिलता है।
0: मिलता है, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो आपका ये पुश्तैनी व्यवसाय है मेरा ख्याल है, और आप कर रहे हैं तो अच्छा है, उसमें आप लोग पारंगत होते हैं। पेड़ पर उतनी ऊंचाई पर आपके अलावा और कोई नहीं चढ़ पाएगा। तो ठीक है, इस रोजगार से आप जो कमाई कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बदलाव लाना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ कुछ और भी सोचिए कीजिए ताकि आपके परिवार को और बेहतर अवसर मिल सके। आज आपने फोन किया है, बताइए क्या सुनवाएं आपको।
1: सर मेरा नाम है चमेली वाला, सुनवाइएगा सर।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार सर, मैं करण कुमार बात कर रहा हूँ बेतिया से। ठीक
0: जी करण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है बताएं।
1: है सर, अपना बताइए।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त।
1: बैठे हैं, गर्मी का मौसम बहुत है, बहुत ज्यादा से ज्यादा अब गर्मी पड़ रहा है।
0: हाँ तो ये तो अच्छी बात है, हमारी फसलें, हमारी जमीन, हमारे पेड़ और इस मौसम के जो फल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे गर्मी की वजह से ही, तो इसका तो मज़ा लेना चाहिए मेरा ख्याल है। जी
1: एक गाना सुनना है, मुन्ना भाई फिल्म का गाना है।
2: ए भाई भाई, बहुत खुश लग रहा है भाई, बात क्या है। ए भाई हुआ क्या, ए भाई हुआ क्या, ए भाई बोलना यार, हुआ क्या
3: कट चप्पल।
2: ए भाई

0: भाई रिवर्स में क्या कुछ स्टोरी सुना, स्टार्टिंग से सुना होना। भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया। किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: आज ड्राइवर ने मिरर में देखा नहीं ना, कैसा मैनेज किया?
1: अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सूसू करने का आइडिया तब आया।
0: अरे भाई तू जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरे मुन्ना इतने साल थे के थर।
0: ऐसा हो गया भाई?

0: भाई
1: ऑफिशियल
0: नहीं रे,
1: चाइनीज हक्का नूडल
0: नहीं रे, सर्कस सर्कस
1: सर्कस कर।
0: अरे सर्कस में शेर है ना यार,
1: तो

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर।
0: अपना नाम पता बताएं, कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: सर बिहार के नदाव गांव से सर बोल रहे हैं। एक बार कॉल किए थे सर, अनिल कुमार यादव
0: जी। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
1: जी सर, हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं सर। स्कूल पर एक स्कूल है, एक बक्सर स्टेशन से थोड़ा दूर 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे सर ड्राइवर लोग जो है ना सर, जो दोस्त है, थोड़ा कॉल करिएगा, हमारा नाम भी लीजिएगा।
0: कहाँ पर?
1: सब यही पे है सर, स्कूल में है सर। तो स्कूल में ड्राइवर लोग रहते हैं, स्कूल वाली गाड़ी जो चलाते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: वो लोग भी सुनते हैं, तो वो लोग बोले कि मेरा नाम भी थोड़ा हेलो करना, इसमें नाम लीजिएगा हम लोगों का भी।
0: अच्छा,
1: तो थोड़ा हम नाम ले लेते हैं उन लोगों का।
0: हाँ तो ठीक है, लेकिन उनको भी कहिएगा कि वो भी आपके मोबाइल से ही सही या अपने मोबाइल से कॉल करेंगे। और अभी उनका नाम ले सकते हैं, ले लीजिए और बताइए फिर।
1: कमलेश यादव, बत्तेश यादव, मंटू, अजीत यादव, तूफानी, बहादुर और सुनील यादव, जो कि बनारस में रहते हैं, मेरे प्रिय दोस्त हैं सर। और मेरी पत्नी का नाम रूबी कुमारी, बच्चा अंकुश और सत्यम।
0: ये सब मिलकर क्या सुनना चाहते हैं?
1: मुझे तो भी मोहब्बत का सारा मिल गया होता है, यही गाना सुनवा दीजिएगा।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो, नमस्कार। हम
0: जी
1: नवादा जिला से बोल रहे हैं।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: हम मोहम्मद अजीज बोल रहे हैं। हम बहुत दिनों से लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था। आज कैसे कैसे हमारा कॉल लग गया।
0: आपके लगाने से ही लगा है कॉल। आपने प्रयास किया, लग गया, और अब
1: हाँ।
0: कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए।
1: नहीं, सही का अच्छा लग रहा है हमको। बात करने में अच्छा लग रहा है। हम सर, हम विकलांग है।
0: अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
1: हम कुछ कुछ नहीं करते, हम घर पर बैठते रहते। दिन भर कार्यक्रम सुनते हैं, रात में भी कपाल सुनते हैं, और बहुत प्रोग्राम सुनते हैं, समाचार सुनते हैं। 7:30 बजे समाचार सुनते थे, 7:45 बजे वाला समाचार सुनते हैं। आइए,
0: ठीक है, आज क्या सुनेंगे बताइए।
1: आज ये सुना दीजिए, मोहम्मद रफी का, जो धीवी का चांद हो, आज ताब हो।

0: नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे
0: हाँ
1: हैं, नाम पता बताएं।
0: विद्या, बहुत दिन पर फोन लगाया है, बहुत दिन पर फोन लगाया है, पहली बार का फोन लगाया है सर।
1: जी, स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए।
0: मेरा नाम रितेश कुमार का है, गंज विद्यापति मऊ बाजार विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर से बोल रहे हैं। कुछ रखने के लिए रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्म उलिम इन सब सुनते रहते हैं।
1: जी, बहुत अच्छा।
0: हम गाना सुनना चाहते हैं फिल्म भक्ति भक्ति वाला ही गीत। हम सोचते हैं भक्ति भगवान पर ही विश्वास रखते हैं, भगवान वाला ही गाना सुनना चाहते हैं। ये भक्ति ये गाना है, ये है जो सच पूछो जहाँ वहाँ था वहाँ संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ।

0: ऑन एयर फरमाइश।
1: सतनाज मंडल लाखों तक से बोल रहे हैं
0: जी। मंडल जी स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, समाचार बढ़िया है।
0: और क्या हो रहा है?
1: कहाँ हो रहा है, अभी ऐसे बगीचा में बैठे हुए हैं यार। क्या
0: काम कुछ नहीं हो रहा है अभी?
1: नहीं काम कुछ नहीं, हमको सोनमा के पिंजरा में बंद भेजे। हाय राम ये गाना जरा सुना दीजिएगा।

0: हेलो सर,
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: नमस्ते सर।
1: बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
0: जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी सोनू कुमार जी, कैसे हैं आप?
0: जी हम अच्छे हैं सर, आपसे पहले भी बात हो चुका है।
1: जी
0: सर आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
1: जी तो बताइए अपने बारे में, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आगे की योजना है, बताइए।
0: डर लग रहा है बोलने में।
1: डरने की क्या बात है, आप पहले भी बातचीत कर चुके हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो हम जान लें आपकी।
0: कुछ नहीं सर, बस ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, गाती में बैठी बैठी।
1: आप विद्यार्थी हैं ना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी?
0: जी करते हैं ना सर।
1: अच्छा, तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
0: जी सर।
1: हाँ, अभी अगर आप ध्यान देते हैं तो आगे के जीवन में आपको आराम होगा। अभी अगर आप ठंडी ठंडी हवाएं और आराम के चक्कर में रहेंगे तो फिर आगे तपिश बर्दाश्त नहीं होती है बढ़ती उम्र में। अभी आप युवा हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अभी का कष्ट जो है वो झेल लेना चाहिए, बल्कि कष्ट कर लेना चाहिए, ठीक
0: जी
1: है,
0: सर,
1: जो भी कष्ट हो, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खूब मन लगाकर पढ़िए और कुछ अपने बारे में सोचिए,
0: जी सर,
1: है ना? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कहा भी गया जो डर गया सो मर गया,
0: जी सर,
1: तो जब पहले ही मर जाएंगे तो फिर करेंगे क्या आगे, है ना? तो जीने की सोचिए, डर को दूर भगाइए, और दूसरी बात है कि डर के आगे जीत है।
0: जी सर।
1: चलिए क्या सुनेंगे बताइए।
0: नसीब फिल्म का गाना एक सुना दीजिए सर।
1: हाँ, जिंदगी इम्तिहान लेती है।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10 बजकर 30 मिनट के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612222500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612222500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत कलाकार हैं कुंदन कुमार और मोनिका राज। पहले सुनिए कुंदन कुमार से चौमासा।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: घर सामानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे है की गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे कुंदन कुमार और मोनिका राज। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम घरनी।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिंग लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहरी इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं 2 बार मुखिया बनी।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: घरनी कार्यक्रम में सभी श्रोता लोगन और प्यारी सखियन के निमिषा सिन्हा के प्रणाम। कहथिन अपने सवन कैसे नाथिन, अपने ठीक होथिन हम आशा रखिए। और सखी हमने सब ठीक रहे इला जरूरी है कि हमने के पर्यावरण ठीक रहे, और हमने के पर्यावरण के स्वस्थ और संतुलित रहेला जरूरी है कि समय पे जाड़ा हो, समय पे गर्मी हो, समय पे बरसात। और तप्पल गर्मी के बाद बरसात के इंतजार सबके रहे कि कब बादल आते और कब बारिश हो जाते। हमने सबके तब राहत मिलते गर्मी से। ई बरसात से हमने के संगे पशु पक्षी और पेड़ पौधा के भी राहत मिले है। मुरझायल पेड़ पौधा फिर से हरिया जाए। लेकिन अभी देखा कई शहर में तो बादल आ रही है लेकिन बरस ना रही है। कहे कि शहर में लगातार कट रहल पेड़ और हरियाली के कमी के कारण बादल के अनुकूल वातावरण ना मिल पावे है जे उनका के बरसेला मजबूर कर सके। देखथिन पेड़ पौधा हवा में प्राकृतिक नमी छोड़ा है जे बादल के आकर्षित करे में और उनका के ठंडा करके बरसावे में मदद करे है। यह ला वृक्षारोपण यानी कि पेड़ पौधा के लगावे ला जोर देवा जाए। और ई महीना के शुरुआत के सप्ताह में पेड़ पौधा के एको खासे उत्सव मनावल जाए जेकरा के वन महोत्सव सप्ताह कहल जाए। वन महोत्सव हमने के देश में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनावल जाए है। ये एगो राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण सप्ताह है। एक शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा कर गई हल। वो दिल्ली में पहला पौधा लगा के ई आंदोलन के शुरुआत कल थिनल ताकि आम जनता में पर्यावरण और पेड़ के प्रति जागरूकता के बढ़ावल जा सके। ई महोत्सव के उद्देश्य है कि देश के हरित क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र के बढ़ावल जाए। ग्लोबल

वार्मिंग के रोकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के कम करके जलवायु परिवर्तन के असर के धीमा कहल जाए, और ऐसन पेड़ लगावल जाए जैसे फल छाया और मवेशी ला चारा मिल सके, और मृदा संरक्षण कल जाए, मतलब कि पेड़ के जरिए मट्टी के कटाव के रोके के और जमीन के उपजाऊ बनावे के। एक अलग कई तरह के सरकारी पहल भी कर गई है जेकरा से देश में पेड़ पौधा के संख्या के बढ़ावल जा सके, जैसन कि एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू कर गई है। ये अभियान लोगन के अपन माँ के सम्मान में एक पौधा लगावेला प्रेरित करे है। वही तरह मातृवणी परियोजना जेकर अंतर्गत थीम आधारित शहरी वन के विकास कल जा है, जैसन कि सामुदायिक वानिकी के बढ़ावा देवेला अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ फैलल मातृवन परियोजना के शुरुआत कल गई है। नगर वन योजना भी शहर में हरित क्षेत्र के बढ़ावेला चलावल जा रही है। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान पूरा देश में बड़ पैमाने पे कई तरह के गतिविधि भी आयोजित कल जा है, जैसन कि निःशुल्क पौधा वितरण, सरकारी नर्सरी और वन विभाग द्वारा लोगन के मुफ्त और बहुत ही कम कीमत पे पौधा बांटल जा है। राज्य सरकार वन महोत्सव सप्ताह में करोड़ों पौधा लगावे के भी लक्ष्य रखा हथिन। सरकार खाली वन विभाग के ही ना बल्कि PWD, शिक्षा विभाग और रेलवे जैसन अलग अलग सरकारी विभाग के पौधा लगावे के और उनका देखभाल के जिम्मेदारी सौंपा हथिन। डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी युवा लोगन के जोड़ेला सरकार माई भारत जैसा आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से भागीदारी दर्ज करावेला मौका दे रहा थी। प्रोत्साहन ला बेहतर पर्यावरण कार्य करे वाला गांव, पंचायत, स्कूल पर्यावरणविद के सरकारी स्तर पे सम्मानित और पुरस्कृत कर जा है। ये तरह से सखी ये गो महान पारंपरिक देश के उत्सव है जे भारतीय संस्कृति और विरासत के दर्शावे है। काहे कि हमनी के संस्कृति में पेड़ खाली वृक्ष ना होवे है, ये पूजनीय भी होवे है। त सतत विकास और प्रकृति ला अपने इस सप्ताह एगो पेड़ जरूर लगाथिन और प्रदूषित ई पर्यावरण के फिर से पवित्र बनाथिन, और अपन कार्यक्रम में और अपने के वातावरण के पवित्र बनावेला हम सुना ले ली है ई लोक भजन उषा कुमारी से।

0: लोकभजन उषा कुमारी के आवाज में। ई गीतला इनका के बहुते बहुते धन्यवाद। और सखी देखा आज की बेटी हर योग्यता में सफल होती ने, उनकर योग अपन योग्यता से वो हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान करल थी ने। अगर उनका सही से पढ़ावल जाए, उनका अगर सही समय पे ब्याह कर जाए तो वो आगे बढ़ के सब जो कर सकत हैं, जो लड़का कर सकत हैं। तो एक से जोल एगो कहानी ले ली है। कहानी के शीर्षक है अनंत आकाश, जे बाल विवाह पे आधारित है। और कहानी का रहा थीन आशा चौधरी। तो सुनल जाए इनका से एक कहानी।
1: आज राम बाबू लाल काफी खुश थे, क्योंकि आज वे एक तो बेटी का ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने वाले थे, और दूसरा गांव के साहूकार से लिए हुए कर्ज से भी, जो बढ़कर सुरसा की तरह बड़ा हो चुका था, उससे भी मुक्त होने वाले थे। आज इनकी मिट्टी खपरेल वाले घर में बड़ा ही रौनक चारों तरफ नजर आ रहा था। रस्में चल रही थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सभी शादी को लेकर तैयारियों में व्यस्त थे। आज शाम ही बारात दरवाजा लगने वाली थी, सो सभी खूब खुश नजर आ रहे थे। लेकिन गीता को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास थी। गीता रोज स्कूल जाती थी, उसे पढ़ने में बहुत मन लगता था और स्कूल की सबसे तेज लड़की थी वो। शिक्षक शिक्षिका उससे बहुत खुश रहते थे। वे जानते थे कि एक दिन गीता अगर यूं ही पढ़ाई लिखाई करती रहे तो इस विद्यालय और स्थान का नाम अवश्य एक दिन रोशन करेगी। वह मेधावी छात्रा के साथ साथ सुशील और मिलनसार भी थी। सभी टीचर उसे प्यार करते थे और खूब पढ़ाई करने और भविष्य में आगे बढ़ने को उसे प्रोत्साहित करते रहते थे। गीता को विज्ञान से बहुत प्यार था और वो हमेशा कहती रहती थी कि उसे डॉक्टर बनना है। गांव में कोई भी माँ इलाज के बिना नहीं मरेगी, ऐसा वह सोचती थी। परंतु यह क्या, उसकी शादी की खबर जब स्कूल पहुंची तो सभी टीचर स्तब्ध रह गए। तब प्रिंसिपल मैडम से रहा नहीं गया। उन्होंने शादी के एक दिन पहले चुपके से गीता की एक सहेली को एक चिट्ठी दी और उसे गीता को पहुंचा देने को कहा। गीता की सहेली ने ऐसा ही किया।

गीता चिट्ठी पढ़ते ही छिपते छिपाते प्रिंसिपल मैडम से मिलने उस पेड़ के पास चली गई जहां उन्होंने गीता को बुलाया था। मैडम भी समय से पहुंच गई थी वहां। उन्होंने गीता से कहा, गीता तुम बिल्कुल डरो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन यह सरासर गलत है। अभी भी समय है, अपना भविष्य और बचपन बचा लो। गीता ने कहा, पर पिताजी की इज्जत तो बर्बाद हो जाएगी ना मैडम। मैडम ने कहा, उनकी इज्जत बेटी की मुस्कान से कभी बड़ी नहीं हो सकती। दूसरे दिन सभी शादी की तैयारियों में मशगूल थे। बारात दरवाजे लगी थी। उधर सभी सोच रहे थे कि गीता तो तैयार हो रही होगी, और जब उसे लाने घर के लोग उसके कमरे में पहुंचे तो कमरा बिल्कुल खाली था। दुल्हन वहां नहीं थी। चारों तरफ आंगन में उसे खोजा गया, पर वो कहीं नहीं मिली। चारों तरफ लोगों के बीच कानाफूसी और तरह तरह की बातें होने लगी। गीता के पिता गुस्सा से आग बबूला हो गए और चिल्लाने लगे, बोले, ये हमारा अपमान है, ये ऐसा कैसे कर सकती है। इन्हीं सब बातों के बीच, जबकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, तभी उस आंगन में एक जीप आकर रुकी, जिसमें बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस और प्रधानाध्यापिका मैडम श्रीमती सांत्वना जी थीं, और इन लोगों के पीछे ही गीता खड़ी थी। वह भागी नहीं थी, वह तो लौटी थी, डरी सहमी नहीं, अपितु एक मजबूत लड़की बनकर, अपने अधिकारों की आवाज बनकर लौटी थी वो, जो उसकी प्रधानाध्यापिका ज्योत्सना जी ने उसे सिखाया था, जिसे वह अच्छी तरह समझ भी चुकी थी। चूंकि वह पढ़ने में तेज थी और कुछ बनना चाहती थी, तो यह सहारा उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा ही था, जिसके सहारे वह अपने भविष्य को जीतना चाहती थी। जीप में सरकारी अफसर विवाह स्थल पर पहुंच चुके थे। इसकी जानकारी सरपंच और वहां के मुखिया को भी हुई। वे लोग भी वहां आ चुके थे। भरी बिरादरी और लोगों के बीच मुखिया ने गीता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया गीता? तुमने अपने पिता रामबाबू लाल को इतना बड़ा अपमान क्यों दे दिया? तब गीता ने कहा, अंकल, मैं भागी नहीं थी, अपने को बचाने गई थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे इन किताबों से और स्कूल जाने से अधिक अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। आप बताइए मुखिया अंकल, इन किताबों का क्या कसूर है? इसमें कहाँ कहीं लिखा है कि 13 साल की उम्र में ही लड़की को दुल्हन बन जाना चाहिए? ये तो अपराध है ना? मैंने तो माँ से कहा था मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर माँ पिताजी से बोल नहीं पाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए। बिल्कुल मौन, किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद किसी के पास इसका कोई जवाब था ही नहीं। उधर दुल्हा का एक दूर का रिश्तेदार, जो दुल्हा का छोटा भाई लगता था, बीच में सबके सामने आकर कहने लगा कि भैया की उम्र 25 वर्ष नहीं है, बल्कि उनकी उम्र 32 वर्ष है, और इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है जो इन्हें छोड़कर अब जा चुकी है। यह सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूल्हा और उनके पिता शर्मसार हो रहे थे। माहौल ऐसा हो गया था कि सभी निःशब्द थे। राम बाबू लाल को तो काटो तो खून नहीं, उनके पैरों तले की जमीन ही मानो खिसक गई थी। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने बेटी का रिश्ता नहीं किया था, उसका भविष्य ही बेचने की कोशिश कर रहे थे। वे चुपचाप दोनों हाथ जोड़े गीता के सामने आकर माफी मांगने लगे, कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी, जो तुमने मुझे बचा लिया है। मैं समाज के डर से, साहूकार से लिए कर्ज की माफी के कारण तेरा बचपन तुमसे छीनने जा रहा था, मुझे माफ कर दो गीता। और फपक कर रोने लगे। गीता दौड़कर अपने पिता के पास आकर उनके गले लग गई और कहने लगी, गलती आपकी नहीं पापा, समाज के लोगों की सोच की है। गरीब और मजबूर दोनों ही लोगों को हमेशा ही दबाया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपने भी साहूकार से कर्ज के पैसे लिए थे, जो बढ़कर इतना ज्यादा हो गया कि आप उसे चुका नहीं सकते थे, और इसी का फायदा उठाकर उसने अपने ही रिश्तेदार से, जो मुझसे उम्र में लगभग दोगुना से भी बड़ा था, आपसे शादी की बात करके पक्की कर ली, जिससे आपका कर्ज तो माफ हो जाता, आपके पास कोई चारा भी नहीं था। मुझे पहले से ये सब बात पता था पापा। इतना सुनकर प्रिंसिपल मैडम ज्योत्सना जी राम बाबू लाल को समझाते हुए कहने लगी, देखिए आपकी बेटी होनहार है, वो पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है। राम बाबू लाल, समाज के लिए कुछ करना चाहती है वो।

0: और उसमें वो क्षमता है कि वो ऐसा कर सकती है। वो पढ़ने में काफी तेज है, उसे पढ़ने दीजिए और एक ऐसी बेटी बनाइए जो आपका नाम रोशन करे, जिस पर आपको गर्व हो। बेटी को बोझ मत समझिए, बेटी बोझ नहीं होती। बेटी को भी बेटा के समान ही भविष्य दीजिए और उसका बचपन और जिंदगी सुरक्षित बनाइए। बाल संरक्षण अधिकारी बिल्कुल गीता के पास ही खड़ी थी। उसने गीता की ओर देखते हुए आगे आकर कहा, राम बाबू लाल जी, 13 वर्ष में बेटी की शादी करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इस शादी को यहीं रोकना ही होगा आपको। इतनी कम उम्र में लड़की की शादी रचाएंगे तो उसका भविष्य तो चौपट होगा ही। वह जो करना चाहती है नहीं कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है राम बाबू लाल जी कि जिस बच्ची ने अभी जीवन को समझा ही नहीं, वह किसी घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? कम उम्र में गर्भधारण उसकी जान भी ले सकता है। उसकी पढ़ाई आप छुड़वाएंगे तो हमेशा ही आर्थिक रूप से वह दूसरों पर ही निर्भर रहेगी ना। क्या आप यही चाहते हैं? 18 वर्ष से पहले बेटी की शादी करना कानूनन अपराध है, अपराध। राम बाबू लाल उनसे भी माफी मांगने लगे और आइंदा ऐसा नहीं करने का संकल्प लिया। बेटी का भविष्य और समय पर शादी करने का संकल्प लिया। उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और भी मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने बच्चों का भविष्य संवारूंगा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहा, मैडम, ये हमारी परंपरा है। तो मैडम ने दृढ़ता से जवाब दिया, हर परंपरा सही नहीं होती है। कभी सती प्रथा भी तो परंपरा थी ना, क्या वो सही थी? सभी चुप हो गए। समय बीतने लगा। 1, 2, 3, पूरे 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष के बाद उसी गांव में एक बड़ा अस्पताल बन रहा था और आगे बोर्ड पर डॉक्टर गीता राम बाबू लाल स्मृति स्वास्थ्य केंद्र लिखा था। आज उसका उद्घाटन होने वाला था। आज राम बाबू लाल बूढ़े तो हो गए थे, परंतु पूरे जोश से मंच पर आए और बड़े फक्र से कहने लगे, जिस दिन मेरी बेटी की बारात लौटी थी, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी इज्जत चली गई, लेकिन आज समझ आ रहा है कि उस दिन तो मेरी बेटी ने मेरी इज्जत बचाई थी। राम बाबू लाल हंस रहे थे और पूरा गांव गर्वित था। एक मजदूरी करने वाले ने अपनी मेहनत और जज्बा के बूते बेटी को डॉक्टर बना चुके थे, तो और क्यों नहीं कर सकते ऐसा? डॉक्टर गीता को उस गांव के सभी लोग दिल से आशीर्वाद और शाबाशी दे रहे थे। उसी में से एक बच्ची आई और गीता से बोली, दीदी, मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है। गीता ने उसे प्यार से गले लगाया और खूब पढ़ने लिखने की नसीहत देते हुए एक कॉपी और पेन दिया तथा बिना कुछ बने शादी ब्याह से दूर रहने को कहा। गीता खुश थी और उसे लग रहा था कि आज उसी की तरह पूरा गांव सोचने लगा है। गीता खुशी से अनंत आकाश की ओर देखने लगी। अनंत आकाश।
1: वाह, बहुत ही इनिमन कहानी, अनंत आकाश, बाल विवाह पे आधारित कहानी अलग। और कहानी का रहल थीन आशा चौधरी। तो इनका के ई कहानी ला बहुते बहुते धन्यवाद। देखा, हमनी के सोच बदले के चाही और लेकिन के पढ़ावे के चाही और बाल विवाह के रोके के चाहिए। तो ई निमन जानकारी के बाद का है ना एगो सुनल जाए जत सार गीत उषा उपाध्याय से।

जथसार गीत उषा उपाध्याय से। तो ये गीत लाइन इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता लोगिन, हम बात करें बरसात के वन महोत्सव के सप्ताह में हम कह रही हल कि पेड़ पौधा लगावे के चाही। और तब जब पेड़ पौधा लगते तो बरसात जरूर अत, और जब बरसात अत तो झूमर गीत तो जरूर बजे के चाही। तो बरसात के पहले से ही आगमन ला हम सुना रही अपने के ई बरसाती झूमर उषा कुमारी के आवाज़ में।

वाह, ई बरसाती झूमर, उषा कुमारी के आवाज में। तो श्रोता लोगिन, ई झूमर से तो अपने जरूर झूम गए थी और बरसात के इंतजार भी कर रही थी, और कहीं कहीं तो बरसात हो भी रही है, तो ई गीत अपने के जरूर झुमा दिल की हो। और बरसात हो इला जरूरी है कि अपने एगो पेड़ और बचाथिन भी और एगो पेड़ लगाथिन भी। तो ई गीत ला उषा कुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद, और ये के संग अपने से बातचीत में कब समय और यागल पता न चल।

0: लग। तो अपन निमिषा बहन के देती विदा प्रणाम।
1: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है।

0: और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, सांझी संस्कृति की डोर से बंधा हमारा भारत। वार्ताकार है सुप्रीत।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर, प्रखंड डोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: संस्कृति, अगर यूं कहा जाए कि इस शब्द के विशेषण में कोई देश जोड़ो तो वो देश होगा हमारा सांस्कृतिक भारत। संस्कृति की परिभाषा अगर टटोली जाए तो वो कुछ यूं कहती है, संस्कृति सीखी जाती है और प्राप्त की जाती है। अर्थात मानव के व्यवहार हैं जो जन्म से या आनुवांशिकता से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त करता है और कुछ सांस्कृतिक व्यवहारों को वो समाज से प्राप्त करते हैं जहाँ वे रहते हैं, जहाँ पलते हैं, बढ़ते हैं। संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है। एक सोच या विचार या कार्य को संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति में शामिल विभिन्न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और समय के साथ ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उस विशिष्ट संस्कृति में जुड़ता चला जाता है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। ज्ञान, विचार और परंपराएं नई संस्कृति के साथ नवीनतम विचार और मान्यताओं के अनुकूल जुड़ते चले जाते हैं। संस्कृति गतिशील होती है। कोई भी संस्कृति स्थिर दशा में या स्थायी नहीं होती। जैसे समय बीतता है और संस्कृति निरंतर बदलती है और उसमें नए विचार और नए कौशल जुड़ते चले जाते हैं। और भारत जो कि खुद एक परिभाषित देश है, इन दोनों के समावेश से उत्पन्न होती है। भारत की संस्कृति अथवा संस्कृति की डोर से बंधा हमारा भारत। भारत की संस्कृति बहुआयामी है जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण योग की शुरुआत और उसके अस्तगमन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। पिछली 5 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं इसके एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती है। भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। प्राचीनता के साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता है और इसकी तीसरी विशेषता उसका विश्व गुरु होना है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि

से अन्य संस्कृति की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है। भारत में कुल मिलाकर 415 भाषाएं उपयोग में हैं। भारतीय संविधान ने संघ सरकार के संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं के इस्तेमाल को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। व्यक्तिगत राज्यों के उनके अपने आंतरिक संचार के लिए उनकी अपनी राज्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व भर में भारत में धर्मों में विभिन्नता सबसे ज़्यादा है। आज भी धर्म यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच मुख्य और निश्चित भूमिका निभाता है। भारत में चली आ रही कुछ परंपराएं और रीतियों ने भी भारत की संस्कृति को और भी ज़्यादा निखारा है और इतना ही नहीं भारत की विभिन्नता को भी एकत्रित किया है। जैसे नमस्ते या नमस्कार, भारतीय उपमहाद्वीप में अभिनंदन या अभिवादन करने के सामान्य तरीके हैं। आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन और बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। कई लोग इसे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी प्रयोग करते हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते करना हमारे यहाँ की संस्कृति कब बन गया किसी को खबर तक ना हुई, और आज ये हमारे यहाँ का पारिवारिक संस्कार भी बन गया है। इतना ही नहीं, यह भारतीय होने का चिन्ह और पहचान भी बन गया है। भोजन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रोज़मर्रा के साथ साथ त्योहारों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भोजन एक भारतीय परिवार के लिए सिर्फ खाने के तौर पर नहीं, बल्कि कई परिवारों के एक साथ एकत्रित होने, सामाजिक संसर्ग बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विविधता भारत के भूगोल, संस्कृति और भोजन की एक पारिभाषिक विशेषता है। भारतीय व्यंजन अलग अलग क्षेत्र के साथ बदलते हैं और इस उपमहाद्वीप की विभिन्न तरह की जनसांख्यिकी और विशिष्ट संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर साहित्य की बात की जाए तो उसमें भी हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भारत में ऋग्वेद के समय से कविता के साथ साथ गद्य रचनाओं की मजबूत परंपरा है। कविता प्रायः संगीत की परंपराओं से संबद्ध होती है। रामायण और महाभारत प्राचीनतम संरक्षित और आज भी भारत के जाने माने महाकाव्य हैं। इनके कुछ संस्करण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में अपनाए गए हैं। जीवन जीने और बदलने की ये पद्धतियाँ पारंपरिकता और आधुनिकता के बीच के उन अंतर्विरोधों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके प्रभाव भोजन, पोशाक, भाषा, त्यौहार आदि पर पड़ते हैं। साझा संस्कृति यह तो एक सापेक्ष अवधारण है और यही संस्कृति सहिष्णुता को जन्म देती है। महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक में शामिल है साड़ी। भारत और पश्चिमी देशों में साड़ी का चलन है। साड़ी भारतीय और पश्चिमी और उपमहाद्वीपीय फैशन का एक स्वरूप है जो हर जाति, धर्म और देश की महिलाएं धारण करती हैं। ये हमारी साझी संस्कृति को ही दर्शाता है। बिंदी भी महिलाओं के श्रृंगार का हिस्सा है जो कि एक परंपरागत फैशन बन गया है। त्यौहार की बात करें तो शायद ही वर्ष का कोई भी माह हो जो बिना किसी त्यौहार के हो। हर माह में कोई ना कोई त्यौहार किसी न किसी राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों ना हो, उसमें भागीदारी सभी की होती है। अब तो विदेशों के त्यौहार भी भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो एक विशेष तारीख को ही आयोजित होता है, परंतु देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति। दक्षिण भारत में गुजरात, पंजाब,
असम, आंध्र प्रदेश।

0: देश में मकर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, केरल में मकर विलक, कर्नाटक में एलु विरोध के नाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और गांधी जयंती को पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत के कण कण में संस्कृति का सृजन होता है। यहाँ पे जितनी भी विभिन्नता हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परंतु यहाँ पर एक बस एक बात सबसे निराली है और जरूरी भी, कि हम भारतीय हैं। यहाँ के हर इंसान के रगों में खून के साथ संस्कृति भी बहती है, जो हम सबको एक समान बनाती है और जोड़े रखती है। कुछ भी हो जाए, ना जाने और आने वाले कितने लाखों सालों तक ये भारत की निराली संस्कृति जीवित रहेगी। और इस बात से मुझे मेरे भारतीय, या यूं कहूं कि संस्कृति से बने भारतीय होने पर गर्व है और सदा रहेगा।
1: श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, सांझी संस्कृति की डोर से बंधा हमारा भारत। वार्ताकार थी सुप्रीति।

हमने अपनी जान कहा।

0: के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्रीमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में, सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है याराना। गीतकार है अनजान, संगीतकार राजेश रोशन।

लीजिए सुनिए, आशा भोसले और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है मांग भरो सजना, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीपीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने जी रामजी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है। योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त TTC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक LPG सिलेंडर 3,241 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खान पान व्यापारियों को लाभ होगा। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 के तहत की गई है। इसके तहत 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रूपये निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत यह 6,000 रूपये होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। पंकज कुमार दारात को पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होगा। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। कुल 10 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। यह विषय उन डॉक्टरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से

मध्यम स्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार और समस्तीपुर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं अररिया, दरभंगा, किशनगंज, शिवहर और वैशाली समेत 12 जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इधर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। विकसित भारत रोजगार ग्रामीण एक्ट आज से लागू हो गया है। वजारत देही तरक्यात ने कहा कि वीबीजी रामजी एक्ट के तहत हर एक माली साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। हमारे नामानिगार ने बताया कि रवा माली साल में इस मंसूबे के अमल दरामद के लिए 95,692 करोड़ रुपए का नज्म किया गया है। रियासती हुकूमत ने जी राम जी मंसूबा नाफिज करने के सिलसिले में वसी तैयारी की है। मंसूबे के नफाज के लिए चीफ सेक्रेटरी की सदारत में रियासती कंडक्ट कमेटी की तश्कील की गई है। इस कमेटी में देही तरक्यात महकमा समेत 17 महकमों के सेक्रेटरीज को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डीडीसी को एडिशनल जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम अफसर 15 लाख, डीडीसी 1 करोड़ रुपए तक के मंसूबे मंजूर कर सकेंगे। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की कमी की है। ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के मुताबिक नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। इस कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 3,241 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और दीगर कुकिंग ताजिरों को फ़ायदा होगा। पासपोर्ट दरख्वास्त की फ़ीस में आज से इजाफा हो गया है। ये इजाफा नए पासपोर्ट तरमीमी जाब्ता 2026 के तहत किया गया है। इसके तहत नए बदलाव 36 सफ़ात वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रुपये होगी। 60 सफ़ात वाले तमाम पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की फ़ीस अब 3,500 रुपये तय की गई है, जबकि फौरी मनसूबे के तहत ये 6,000 रुपये होगी। रियासती हुकूमत ने इंडियन पुलिस सर्विस के 12 अफसरान का तबादला कर दिया है। महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रीता वर्मा को होम गार्ड्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पंकज कुमार दरात को पुलिस भवन तामीरात निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुधांशु कुमार को स्पेशल निगरानी इकाई का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। कानून साज काउंसिल के 9 मुंतखब अराकीन की आज हल्फ बरदारी होगी। काउंसिल के ऑडिटोरियम में मुनक्किद प्रोग्राम में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह अराकीन को हल्फ दिलाएंगे। कुल 10 अराकीन की हल्फ बरदारी होगी। आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन आम लोगों की सेहत के तहफ्फुज़ के तहत डॉक्टरों के जज्बा को जाहिर करता है। ये दिन हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती की याद में मनाया जाता है। इस साल का थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये थीम उन डॉक्टरों की जहनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत की अहमियत पर रोशनी डालता है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों की देखभाल के लिए वक्फ करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर आला सम्राट चौधरी और असम्बली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस मौके पर सभी डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी है। रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक

0: पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की से मामूली दर्जे की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। गोपालगंज के भोरे में सबसे ज़्यादा 92.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर और समस्तीपुर ज़िले में तेज़ हवा के साथ भारी बारिश का इम्कान है। इधर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1,500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम

0: लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement.
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: Including emergency and general use medicines.
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है नौनिहाल। गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

0: प्यार का राज सुनिए।
1: फिल्म मेरा साया में सुनिए आशा भोसले को। गीतकार है राजा मेहदी अली खान, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

लिए सुनी लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है हीर रांझा, गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

लिए सुनी लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है उपहार। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और बहुत अच्छा लगता है। अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी, बिल्कुल।
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे। जैसे आजकल कह देते, अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
2: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम?
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं?

0: प्रतिस्पर्धा रखते हैं।
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया, अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
0: मैं
1: उसको पीछे खींचे। हाँ। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में,
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है।
0: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे,
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा,
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं, उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
1: जी बिल्कुल, आप बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, एक गीत सुन ले। और
1: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करिए,
0: व्यंजन लेके आई हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आती है पकौड़ों की, तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन से बेसन के, और
1: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच लें, कल्पना करके उसको हम खा लें।
0: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सिक्योर सका और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो रहा है।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए,
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: जुकाम हो
1: अक्सर होता
0: गया,
1: है
0: खांसी हो गई,
1: जी।
0: सरदर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है? हमारा डॉक्टर,
1: डॉक्टर
0: जो हमारा
1: जी,
0: पारिवारिक डॉक्टर है।
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते या ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि
1: बिल्कुल
0: भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो
1: हाँ
0: फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके
1: नहीं, अक्सर
0: आपका।
1: ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें हैं, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं
0: हाँ,
1: आपको।
0: क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा
1: जी
0: पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और
1: जी
0: पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम
1: जी
0: बताइएगा
1: जी
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी
1: बिल्कुल
0: स्थिति भी होती है कई बार।
1: जी
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी
1: जी
0: समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे,
1: बिल्कुल
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी करते थे। अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे,
1: जी
0: सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: जी ये एक एक जो चीज़ होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते
1: जी
0: बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा, कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है, तो वो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा

0: वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना
1: कंट्रोल
0: चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे शो का तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
0: बिल्कुल, अच्छा आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होता है वही सादा भोजन खाएं।
0: खाएं ज्यादा से ज्यादा, सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आएं। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
1: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था। और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।

0: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अब ये आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: उनकी जेब खाली करने का संसार
1: उनके
0: है।
1: लिए
0: जी जी बिल्कुल जी। आज हम
1: सिरदर्द
0: आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
1: बिल्कुल
0: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो तो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बिना हुआ बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो
1: और
0: रेशम की जो होती है ना उससे
1: हाँ
0: थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो
1: हाँ
0: रेशम
1: हाँ
0: होती है।
1: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती। कई बार
0: जी
1: हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी
0: जी
1: शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन
0: जी
1: सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो
0: हाँ
1: टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर
0: बहुत
1: साड़ी है। तो
0: सुंदर
1: बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न
0: अलग
1: होती है।
0: जी
1: और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है।
0: जी
1: और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।
0: जी और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी
1: हाँ
0: में आराम से पहन सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो
0: जी
1: उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा,
0: जी
1: जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
0: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
1: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है।
0: जी
1: रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है, इसको जलाकर देखा जाता है।
0: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है
1: अच्छा
0: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
1: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको,
0: जी
1: और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
0: जो साड़ी के
1: हाँ
0: इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है इस चीज
1: समझता है
0: को।
1: कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके
0: बिल्कुल
1: धब्बे जो है
0: हाँ
1: स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हाथ से और मेहनत से बनती
1: बनाई
0: है।
1: जाती है। और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि
0: जी
1: अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती हैं साड़ियाँ।
1: हाँ
0: एक गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम
0: क्या
1: शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
0: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं। जी बिल्कुल
1: चलिए सुनते हैं ये
0: जी।
1: गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने।
1: जी, अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ,
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो
0: हाँ,
1: क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है, बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना, सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म

0: विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर
0: या दूसरे के जीवन को
1: खत्म कर लेते हैं कई बच्चे और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये तो जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप हारकर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है।
1: प्रतियोगिता
0: चेहरे की हंसी देख के आपको लगेगा
1: मजा। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
0: बस अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत
0: जी।
1: अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं। लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए

0: हाँ तो मंदाक नहीं जिए
1: हाँ
0: अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और
0: वो
1: आगे
0: है।
1: भी रहेगा
0: हाँ जी हाँ आगे भी रहेगा।
1: व्यंजन
0: वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं? हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं
1: बना
0: पकौड़े।
1: कर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने। तो बात करते हैं, पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात
1: बहुत
0: करिए,
1: शानदार,
0: सच में
1: बहुत शानदार,
0: क्या
1: बहुत
0: मतलब
1: शानदार।
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: इन्होंने
0: बहुत बढ़िया बात
1: देखिए
0: कही है।
1: कितना इसको काव्यात्मक तरीके से,
0: हाँ
1: क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
0: जी
1: लिख भी सकते हैं।

0: अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हम इसी तरह से
1: सच में
0: है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज आलू पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां तीन चार तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, एक दो कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें एक बड़े उस पर एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज आलू और पालक ले लें, इसमें नमक अदरक लहसुन का पेस्ट कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिलाकर पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े वो छान के निकल ही रहे,
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ हाँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ।
1: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया है ना?
1: मैंने कहा ना बारिश होती
0: है। कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती बहुत स्वादिष्ट लगती है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं, ध्यान रहे कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए, और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें, पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमा छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी, तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा

0: पीस लीजिए। इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए। इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है। इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
1: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद भी तो ले
0: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सही।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
2: जी।
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
2: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो

0: नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी हैं मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस,
1: जी
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां, जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिए ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं,
0: जी
1: और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी
0: जी
1: और इन पत्रिकाओं को वो पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां
0: जी
1: इन
0: जी जी
1: पत्रिकाओं में स्थान पाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय, जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी, जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश।
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियाँ मेरी यथार्थ पर आधारित होती थीं। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था,
1: जी
0: हास्य भी मेरे अंदर था, और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा, और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई,
1: जी
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है।
1: जी तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग्य लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई।
1: जी
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया।
1: जी यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी
1: मिला।
0: जी
1: तो रेडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या
0: बड़ा
1: बात,
0: सकारात्मक गीत है,
1: क्या
0: मुझे
1: बात,
0: बहुत अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर क्लासिक गीत है ये।
0: जी
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: रहे

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर,
1: जी
0: और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी
0: अंधे पीसे
1: जी
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी मैंने व्यंग्य लेखन सन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं वो, मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है,
0: जी
1: ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए, तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग्य जो मेरा है उसी को दिखाता है। जिस व्यंग्य को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग्य संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी
1: उसके बाद दूसरा व्यंग्य संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए

0: अवसर में बदल रहे थे,
1: जी
0: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्णकाल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी जी
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया। हम आ गए मोबाइल युग में, जिसमें लोगों पास समय नहीं है,
1: बिल्कुल
0: छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं,
1: जी
0: कोई 3 पेज 4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800 1000 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सन्निधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है,
1: जी
0: जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा।
1: जी
0: बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का सन्निधि। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है।
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है, उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें, परसाई युग से अब
0: जी
1: तक
0: जी
1: कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते
1: बिल्कुल
0: हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं। हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है।
1: जी
0: जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है, वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर
1: जी
0: ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं। उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है,
1: जी
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे,
1: जी
0: पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थीं जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे।
1: जी
0: अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: जी
0: हैं।
1: और पाठक भी, वो एक बड़ा वर्ग था
0: जी
1: पाठक का,
0: हाँ, बहुत बड़ा
1: जो
0: वर्ग
1: पढ़ा
0: था।
1: करता
0: हाँ
1: था।
0: बहुत, हाँ बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा ये चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है,
0: जी
1: और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा
0: जी
1: है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
0: जी
1: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं
0: जी
1: और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
0: जी
1: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ,
1: जी
0: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन
1: मन
0: मेरा
1: मेरा
0: लिख लिया नाम।
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता
1: जी
0: है।
1: जी
0: राडी
1: जी जी
0: साहब,
1: जी
0: व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो
0: जी
1: कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है,
0: जी
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी
1: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने।

0: है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान, देश के नंबर एक सीमेंट।

0: मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: हेलो, गुड इवनिंग और नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त स्मृति।
3: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनंदनी। हम करते हैं आपका स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम लेकर आते हैं ज्ञान, जागरूकता और प्रेरणा से भरपूर नई नई बातें।
2: दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी हमें हर सुबह एक नया अवसर देती है। बीता हुआ कल हमें अनुभव देकर चला जाता है और आने वाला कल नए अवसर और आशाएं लेकर हमारा इंतजार करता है।
3: लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि नई शुरुआत करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब भी हम अपने मन से कोई पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, वही पल हमारी नई शुरुआत बन जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। नई शुरुआत करने के लिए सिर्फ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और आत्मविश्वास चाहिए होता है। और आज की डेट है 1 जुलाई। ये सिर्फ कैलेंडर का एक नया पन्ना या महीने का एक पहला दिन नहीं, ये नई उम्मीदों, नए सपनों, नई ऊर्जा और सबसे इम्पोर्टेंट, नई कोशिशों की शुरुआत का दिन है।
3: दोस्तों, अगर आप बहुत टाइम से कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है।
2: जी हाँ, और आज के कार्यक्रम के दौरान हम आपसे कई सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन किन नई नई चीजों का आविष्कार हुआ और हम सभी की प्रगति और उत्थान के लिए आज के दिन कितने नए नए नियम लागू हुए।
3: दोस्तों, आज की तारीख है 1 जुलाई 2026। आज से शुरू हो रहा है वन महोत्सव, जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाया जाता है। आज ही के दिन हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे भी। ये दिन उन सभी डॉक्टर्स की प्रति कृतज्ञता, फिर उनका आत्मविश्वास और अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जीवन को बचाने का है।
2: 1 जुलाई का एक और विशेष महत्व है सीए डे, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। देश की आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी, सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाए रखने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी अधिकृत लेखाकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: और जब बात आर्थिक व्यवस्था की हो तो जीएसटी डे का भी उल्लेख है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आज ही के दिन 2017 को भारत में गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया था।
2: इन सभी विषयों के साथ हम आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखेंगे और सुनाएंगे आपको बहुत सारे बेहतरीन गाने।
3: फिर हम जानेंगे आज की युववाणी कार्यक्रम का एक बहुत खास सेगमेंट, घूमता माइक्रोफोन।
2: और अंत में जानेंगे कुछ रोचक तथ्य। तो श्रोताओं, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही शानदार।
3: तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं हमारे पहले गाने के साथ,

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज में ये प्यारा सा गाना। अरे स्मृति, क्या बात है, आज आपके हाथ में ये प्यारा सा पौधा।
1: हाँ सुनंदिनी, मैं अभी पास के सामुदायिक केंद्र से आ रही हूँ। वहाँ वन महोत्सव के उपलक्ष्य में मुफ्त में पौधे बांटे जा रहे थे। मुझे ये नीम का पौधा मिला है, जिसे मैं अपने घर के आंगन में लगाऊंगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं कई दिनों से सुन तो रही थी कि वन महोत्सव आने वाला है। क्या तुम मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकती हो? क्योंकि मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये पेड़ पौधे से जुड़ा कोई त्योहार है।
1: हाँ बिल्कुल, वन महोत्सव भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। इसकी शुरुआत साल 1950 में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने की थी। ये हर साल जुलाई के पहले सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जागरूक करना है।
0: ओ अच्छा, तो ये सप्ताह लेकिन पूरा हफ्ता क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? दूसरी चीज कि जहाँ लोग अभी अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, तो इस सप्ताह की क्या जरूरत?
1: देखो, इसकी ज़रूरत आज के समय में पहले से कहीं ज़्यादा है। ये हम सभी देख रहे हैं कि शहरों में कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और असली जंगल कटते जा रहे हैं। पेड़ों की कमी के कारण गर्मी कितनी बढ़ गई है, प्रदूषण बढ़ रहा है और समय पर बारिश भी नहीं होती।
0: हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा। इस बार गर्मी में इतना हाल बेहाल हो गया था कि सांस लेने के लिए भी शुद्ध हवा नहीं मिल रही थी।
1: यही तो बात है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये यूं ही नहीं कहा गया है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। वन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपनी धरती और आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमें पेड़ों को काटना बंद करना होगा और नए पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करनी होगी।
0: ये तुमने बिल्कुल सही कहा स्मृति। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ आया है कि यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम आम लोग इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं?
1: इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। वन महोत्सव के दौरान हम सब कम से कम एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। सिर्फ एक पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी तब तक देखभाल करना भी ज़रूरी है जब तक कि वह पेड़ बड़ा ना हो जाए। अगर हमारे आसपास ज़मीन नहीं है, तो हम गमलों में छोटे पौधे लगा सकते हैं या अपने आसपास के पार्कों में पेड़ लगाने में मदद कर सकते हैं।
0: हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी स्मृति। मैं भी आज ही एक पौधा खरीदूंगी और अपने छत पर लगाऊंगी। मैं अपने पड़ोसियों से भी कहूंगी, दोस्तों से भी बताऊंगी कि एक पौधा खरीदें और अपने घर पर लगाएं
1: बिल्कुल
0: और इस मुहिम से जुड़ें।
1: बिल्कुल सुनंदिनी, अगर हम सब मिलकर एक एक पौधा भी लगाएंगे, तो हमारी धरती फिर से हरी भरी और सुंदर हो जाएगी।
0: ठीक है, आज मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगी और एक पौधा लेकर आती हूं।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोतागण जो हमारी बातें सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है कि जरूर अपने घरों में एक एक पौधा जरूर लगाएं और हमारे साथ बने रहें और सुने अगला ये गाना।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है। तो वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए

0: राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म रोजा से ये प्यारा सा गाना। तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे एक ऐसे समुदाय को जिनकी वजह से हम अपना और हमारे अपनों का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।
3: जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में, जो हर साल आज ही के दिन मनाते हैं। डॉक्टर्स डे के डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान, निस्वार्थ सेवा, समर्पण और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1991 में इस दिवस की शुरुआत की थी।
2: लेकिन आज ही के दिन ये नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, हमारे कई श्रोतागण इस बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल होगा।
3: 1 जुलाई का दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही का दिन है आज।
2: डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय जी का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई 1962 को हुआ था।
3: उनके असाधारण सहयोग एवं योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने इस दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में घोषित किया।
2: डॉक्टर बीसी रॉय भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिजिशियन थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल एजुकेशन के विषय में उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3: बिल्कुल, आपको बताते चलें कि डॉक्टर बीसी रॉय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कई संस्थानों के विकास में भी सक्रिय रहे हैं।
2: वर्ष 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।
3: नेशनल डॉक्टर्स डे का उद्देश्य है डॉक्टर्स के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।
2: जरा सोचिए कि अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो हमारा इलाज कैसे होता, फर्स्ट एड जैसी जरूरी चीज के बारे में हमें कैसे पता चलता, किसी भी तरह की दुर्घटना या महामारी होने पर हम कहाँ जाते, यानी डॉक्टर्स नहीं होंगे तो कैसे इलाज होगा, कैसे करेंगे, सिवाय एक डॉक्टर के ये सब किसी के बस का नहीं है।
3: बिल्कुल, डॉक्टर्स केवल बीमारियों का उपचार ही नहीं करते बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा, करुणा और समर्पण का प्रतीक है।
2: एक अच्छा डॉक्टर केवल दवाइयां नहीं देता बल्कि अपने व्यवहार, विश्वास और मानवीय दृष्टिकोण से भी लोगों को नई आशा देता है।
3: आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज का निर्माण डॉक्टर्स के अथक परिश्रम और समर्पण के बिना संभव नहीं है।
2: ये दिन उन सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देने का है जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख और ऊपर की सारे दुख दर्द को भूलकर हमारा इलाज करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं।
3: उनके प्रति सम्मान, विश्वास और कृतज्ञता व्यक्त करना भी हम सभी का नैतिक दायित्व है। तो इसी के साथ हम सभी नमन करते हैं उन डॉक्टर्स को और उनके सम्मान में सुनाते हैं आपको ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में MS धोनी फिल्म से ये प्यारा सा गाना। स्मृति, क्या तुम्हें पता है आज 1 जुलाई है? आज के दिन हमारे देश के लिए बेहद खास है।
1: हाँ सुनंदिनी, आज 1 जुलाई है, यानी राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। भारत में हर साल आज के दिन को देश के सभी सीए की मेहनत और उनके योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे क्या तुम जानती हो कि इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
1: हाँ, मुझे याद है, 1 जुलाई 1949 को भारत की संसद ने एक कानून पास किया था, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI कहा जाता है। इसी संस्था की स्थापना की याद में हर साल 1 जुलाई को सीए डे मनाया जाता है। ये भारत की आज़ादी के बाद बनाए गए सबसे शुरुआती संगठनों में से एक है।
0: वाह, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी सीए को देश का विकास का एक मजबूत पिलर माना था। वे इसे सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते थे।
1: हाँ, और एक मजेदार बात बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि सीए के सिग्नेचर की अहमियत देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके एक दस्तखत पर देश की जनता और सरकार पूरा भरोसा करती हैं।

0: वाकई ये बात तो बिल्कुल सच है। एक चार्टेड अकाउंटेंट का काम सिर्फ टैक्स बचाना या ऑडिट करना नहीं होता, वे कंपनी को सही रास्ता दिखाते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकते हैं और देश के बजट को, व्यापार को सही दिशा देते हैं, मदद करते हैं। चाहे बिजनेस छोटा हो या मल्टीनेशनल कंपनी, बिना सीए के कोई भी सही से नहीं चल सकता।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, उनका काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। जरा सोचिए, अगर किसी से भी जरा सी भी गलती हो जाए या देश की अर्थव्यवस्था या किसी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचती है, तो सीए जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। सीए बनने की परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसमें पास होने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है।
0: हाँ, मैंने भी सुना है कि इसकी पढ़ाई बहुत धैर्य और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसकी पढ़ाई में सालों तक मोटी मोटी किताबें पढ़ना, फिर एकदम कठिन मुश्किल परीक्षाओं को पास करना, हर किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग इसे पूरा करते हैं वे वाकई तारीफ के काबिल होते हैं।
1: बिल्कुल सही, आज का दिन उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का दिन है जो सीए बनने का सपना देख रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से देश की सेवा कैसे की जा सकती है।
0: सच कहा तुमने स्मृति, देश के आर्थिक विकास को पारदर्शी और मजबूत बनाए रखने के लिए इन सभी चार्टेड अकाउंटेंट्स को उनका योगदान अमूल्य है। चलो, आज इस खास मौके पर हम भी अपने उन सभी दोस्तों और करीबी को सीए दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं जो इस क्षेत्र में हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो।
1: बिल्कुल सुनंदिनी, ये बहुत ही अच्छा विचार है। चलो, सबको हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारक हो सीए डे की। तो चलिए, इसी के साथ आपको सुनाते हैं ये अगला गाना।
2: बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या

0: अभी आप सुन रहे थे आरडीबी मना के सलीना की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना फिल्म दे दनादन से। तो दोस्तों, एक सशक्त अर्थव्यवस्था की पहचान केवल उसके संसाधनों से नहीं होती, बल्कि उसकी पारदर्शिता और प्रभावी कर व्यवस्था से होती है।
1: इसी विचार को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया। इस ऐतिहासिक आर्थिक सुधार की स्मृति में हर वर्ष 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी डे मनाया जाता है।
0: अच्छा, तो इसके बारे में और भी कुछ बता सकती हो मुझे?
1: बिल्कुल।
0: मैं तुमने बताया था कि तुमने किसी से बातचीत की है इसके बारे में, तो क्यों ना उन्हीं से बात की जाए?
1: बिल्कुल, वो बातचीत हम हमारे श्रोताओं को भी जरूर सुनाएंगे।
0: ठीक है, तो सुनते हैं उनकी बातचीत।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं का। आज जीएसटी डे के विशेष अवसर पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारत की कर व्यवस्था को एक नई दिशा और एक नई पहचान दी है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में एक समान और सरल प्रणाली स्थापित करना तथा वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को साकार करना था। और इसी इम्पोर्टेंट विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सम्माननीय अतिथि श्री राम किशोर ठाकुर, अधीक्षक सेवानिवृत्त सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कंसल्टेंट पटना। सर, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो अब मैं बिना किसी विलंब के चर्चा का प्रारंभ करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में ये बताइए कि जीएसटी क्या है और इसे लागू करने की जरूरत क्यों हुई।
2: जीएसटी एक कम्प्रीहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कंप्लायंस है जो बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके बना है और ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लागू है। हम कह सकते हैं गुड्स इज कम्प्रीहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सामान जब हम परचेज करते हैं या कोई भी हम सर्विस जब लेते हैं किसी से, सर्विस प्रोवाइडर से, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ये डिफरेंट स्टेजेज पे पहले के पे किए गए टैक्सेस का क्रेडिट देने का भी इसमें प्रावधान है, जिसे ITC कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इससे जीएसटी से हमें मदद मिलती है कि किसी भी सामान के कैस्केडिंग इफेक्ट जो प्राइसेस पर है ड्यू टू टैक्सेस एट डिफरेंट प्लेसेज एंड टाइम, उसके दुष्प्रभाव को खत्म किया जा सका है इस टैक्सेशन सिस्टम में। हमारे पास इस टैक्स सिस्टम को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज, स्टेट टैक्स, वैट, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये बहुत सारे टैक्स बहुत बहुत दरों पर, भिन्न भिन्न दरों पर, भिन्न भिन्न राज्यों में लागू थे। जीएसटी में इन सभी टैक्सों का विलय किया गया है और राज्यों में विभिन्न दरों की कर प्रणाली को पूरी तरह से इसमें खत्म किया जा सका है। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वन नेशन वन टैक्स के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि टैक्स कंप्लायंस

0: चांसेज आसान हो। मैं समझता हूँ कि मैंने जीएसटी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जीएसटी लागू होने से वास्तव में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं? यदि सचमुच सस्ती हुई है, यदि इसका जवाब हाँ है, तो किन क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक लाभ मिला है?
0: जीएसटी लागू होने से टैक्स की अनसर्टेनिटी समाप्त हो गई है। ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था जिसमें हर राज्य अपने सुविधा के हिसाब से सामान पर टैक्स लगाते थे, ये प्रणाली समाप्त हो गई है। तो निश्चित रूप से विभिन्न टैक्स जो एक ही सामान पर अलग अलग जगहों पर लगते थे और उससे जो प्राइस में वृद्धि होती थी, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, उसको समाप्त करने में इस टैक्स सिस्टम में मदद मिला है। सर्विस सेक्टर लाभान्वित हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वस्तुओं के दाम में निश्चित रूप से समानता और गिरावट आई है, क्योंकि अपने पूरे देश में इस पर लागू होने वाले टैक्स एक ही हैं और पहले की तरह जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था, मल्टीपल रेट्स थे, वो अब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान के परचेज में निश्चित रूप से ग्राहकों को सहूलियत मिली है। सर्विस बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली उसमें थोड़ा कम फायदा मिला है। फायदा नहीं कहें, यूनिफॉर्मिटी कम है, क्योंकि सर्विसेज के क्वालिटी बहुत डिफर करते हैं।
1: मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या जीएसटी की वजह से टैक्स चोरी में भी कमी आई है? क्या जनता को इससे लाभ मिला है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जीएसटी में चोरी निश्चित रूप से कम हुई है और इसके सिस्टम ऐसे हैं कि अगर कहीं से कोई सामान हम खरीदते हैं या सर्विस हम लेते हैं तो उसका 50,000 रुपये से मूल्य ज्यादा रहने पर ऑनलाइन ईवे बिल जेनरेट करने की व्यवस्था है। इस ईवे बिल के जेनरेशन से, जिसमें की सारी चीजें, सारे डिटेल्स इनवॉइस के मेंशन रहते हैं, निश्चित रूप से टैक्स की चोरी में कमी हुई है, क्योंकि इसमें आम इनवॉइस की तरह ईवे बिल को रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता है और कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। और हम देख सकते हैं, अगर विगत 5 वर्षों में टैक्स कलेक्शन के अमाउंट को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हो रही है जीएसटी कलेक्शन में और कैसे हो रही है। 2021 में 11.37 लाख करोड़ कलेक्शन था, जो 21-22 में 14.83 लाख करोड़ हो गया, 22-23 में ये 18 लाख करोड़ हो गया, और फिर 23-24 में ये 20.18 लाख एवं 24-25 में 22.08 लाख करोड़ हो गया। तो हम देख सकते हैं कि निरंतर टैक्स कलेक्शन के रेट में, अमाउंट में वृद्धि हो रही है। पहले ये वृद्धि 30% तक था, विगत 2 वर्षों से 10 और 11% के जोन में इसकी वृद्धि देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से राजस्व में वृद्धि हुई है और इसे राजस्व में वृद्धि होने से देश के विकास में सहूलियत मिलती है और उससे देश के नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होती है।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि कई बार वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग जीएसटी दर होने के कारण कीमतों को लेकर विवाद होते हैं। उपभोक्ता कैसे जान सकते हैं कि उनसे सही जीएसटी ली जा रही है या नहीं?
0: बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और इस संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रबुद्ध उपभोक्ता के लिए कुछ भी जानना मुश्किल नहीं है और टैक्स के दरों में विवाद को जीएसटी विभाग, जीएसटी बोर्ड, सीबीआईसी, विभिन्न इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर, पब्लिक नोटिस, ये निकाल करके विवादों को विराम दे सकते हैं। और इसे और सरल बनाने के लिए जो स्थानीय जीएसटी अथॉरिटीज हैं, वो रेगुलर मीटिंग इनवाइट कर सकते हैं बिजनेसमैन का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, जिसमें वे अपने इश्यू को रेज कर सकते हैं। इन सब कदमों से निश्चित रूप से व्यापारियों को भी फायदा होगा और टैक्स से में जो भी भ्रम बना हुआ है उसका समुचित समाधान उपलब्ध होगा।
1: और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये तो आपने बताई कि जो भी आम जनता की जो प्रश्न होते हैं ये आपने उनके बारे में उत्तर दिया, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जीएसटी डे को लेकर या जीएसटी को लेकर? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, युवाओं पर सब कुछ निर्भर करता है और उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य इस दिवस पर यह है कि जब भी वो कोई सेवा लेते हैं या किसी सामान की खरीदी करते हैं तो जीएसटी इनवॉइस की मांग अवश्य करें, क्योंकि हर ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन अपने देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए हम जब भी कोई सेवा लें, जब भी कोई सामान परचेज करें, तो सेलर को, सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी इनवॉइस के लिए अवश्य इन

0: एग्जिस्ट करे। मैं कहना चाहता हूं ऑनेस्ट टैक्स कंप्लायंस ये मार्क ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, और आपके सिर्फ एक कदम से, इनवॉइस मांगने के एक कदम से टैक्स इवेजन में निश्चित रूप से कमी आएगी और ये हमारे देश के विकास में मजबूती प्रदान करेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने बहुत ही सरलता से जीएसटी जैसे इम्पोर्टेंट विषय को बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में समझाया हमारे श्रोताओं को, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें भी ये कार्यक्रम हमारा बहुत पसंद आएगा, ये वार्ता बहुत पसंद आएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर प्रश्न और प्रासंगिक प्रश्न पूछने के लिए।
1: धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया, इस कार्यक्रम को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमेशा आपका स्वागत है।
1: तो दोस्तों, ये सुनिए आपने बातचीत आर के ठाकुर जी से। तो ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सरल, एकीकृत और उत्तरदायी कर व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को मजबूत नींव देता है।
2: तो अब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, तो आनंद लीजिए इस गाने का, सुजैन डिमेलो की आवाज में फिल्म अपना सपना मनी मनी मनी से।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम के एक खास सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स यानी रोचक तथ्य की। क्या आपको पता है, मैं आज एक किताब में पढ़ रही थी कि बिहार के बारे में कुछ पढ़ रही थी कि जो आपको हैरान कर दे सकता है।
1: ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने? वैसे तो हमारे बिहार का इतिहास और बिहार ज्ञान और इतिहास की भूमि रही है। यहाँ की हर बात में कुछ ना कुछ अनोखा जरूर है। मुझे भी बताओ और हमारे श्रोताओं को भी बताओ कि तुमने ऐसा क्या पढ़ा।
0: जो मुझे पता चला है वो ये है कि हमारे बिहार में मखाने की खेती जो होती है, क्या आपको पता है कि ये जो इसका 80 से 90% हिस्सा अकेले बिहार में उगाया जाता है?
1: अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत गर्व की बात है। मुझे ये तो पता था कि मिथिलांचल के इलाके में मखाने की खेती बहुत होती है, पर ये नहीं पता था कि पूरे विश्व का लगभग सारा मखाना यहीं से जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, यह सुपर फूड माना जाता है। बिहार के किसान तालाबों में कड़ी मेहनत करके इसे उगाते हैं और आज इसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसे GI टैग भी मिल चुका है, जिसका मतलब है कि इसकी एक खास पहचान है।
1: ये तो बहुत ही शानदार बात बताई तुमने। अब दूसरा अद्भुत तथ्य कौन सा है?
0: दूसरा तथ्य हमारे इतिहास और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से जुड़ा है। सब जानते हैं कि आज की दुनिया भर में लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार का वैशाली जिला था?
1: अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। वहाँ बहुत समय पहले लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था।
0: बिल्कुल सही। आज से लगभग 2500 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में राजा महाराजा अपनी मर्जी से शासन करते थे, तब वैशाली में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मिला करते थे और वही फैसला लिया करते थे। वहाँ बकायदा एक सांसद असेंबली होती थी, जहाँ चर्चा करने के नियम बनाए जाते थे।
1: तो श्रोताओं, ये तो रही अब रोचक तथ्य। अब आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना

0: अच्छा स्मृति, क्या इस गर्मी में तुम वाटर पार्क गई इस बार?
1: नहीं, मैं तो नहीं गई।
0: अरे बहुत मजा आता है, मैं कुछ दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ गई थी। वहाँ इतने अच्छे ऑफर्स, राइड्स, खाने पीने की भी व्यवस्था और बहुत कुछ है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के। अच्छा,
0: और वहाँ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था वेव पूल, जहाँ पे हर थोड़े देर पे वेव्स चालू होते थे, जहाँ लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे।
1: पूरा सी वाला फीलिंग आ रहा होगा। नहीं,
0: हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया पर्सनली। और मेरे दोस्तों को, किसी को हाइट से डर लगता था, वो राइड्स पे नहीं जाना चाह रहे थे। मैंने तो बहुत राइड्स एंजॉय किए और मुझे बहुत मजा आया।
1: बिल्कुल। मैंने सुना था कि वहाँ कई तरह के यू नो गेम्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स जिनको कहते हैं। वहाँ म्यूजिक बजा के लोग डांस भी करते हैं पानी में एंड ऑल दैट, एंड रील्स तो खैर बनाते ही ऑफ कोर्स।
0: हाँ बिल्कुल, तो मेरा आपके लिए ये राय है, या फिर कह लो कि मैं भी जाना चाहूंगी आपके साथ फिर से। तो आप और हमारे श्रोतागण जरूर जाएं इस गर्मी में वाटर पार्क, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में आपसे। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल परिक्रमा।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है साप्ताहिक खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ है रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता बंधु आप भी स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। खेलों की दुनिया में जहां एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच दिनों दिन बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विंबलडन 2026 का मैच भी अपने आकर्षण को बनाए हुए है। खेलों की दुनिया में और भी बहुत कुछ आपसे बातचीत करेंगे हम, हमारे साथ बने रहिए।
0: श्रोताओं, आज फीफा विश्व कप 2026 पर हम आपको सुनाएंगे वरिष्ठ खेल पत्रकार और खेल

0: समीक्षक प्रेमचंद झा जी से की गई बातचीत। तो आप बने रहिए कार्यक्रम के साथ, बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले सेगमेंट खेल गतिविधियां में जानते हैं बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में, साथ ही जान लेंगे कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं।
1: सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। इस मैच में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले दिनों पराग्वे ने फुटबॉल के इतिहास में एक नया इतिहास बना दिया है, उसने जर्मनी को हरा दिया है। टूर्नामेंट की 41वीं रैंकिंग वाली टीम पराग्वे ने 4 बार की विश्व चैंपियन और 10वीं रैंकिंग वाली जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। निर्धारित और अतिरिक्त समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। इस जीत के बाद पराग्वे में एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। मैच के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जर्मनी ने पूरे मैच में 78% पोजीशन रखा और 753 पास पूरे किए। वहीं पराग्वे सिर्फ 262 पास ही खेल सका, लेकिन उसकी 4-5-1 लॉ ब्लॉक रक्षा पंक्ति अभेद्य रही।

0: हैरान करने वाले हैं। जर्मनी ने पूरे मैच में 78% पोजीशन रखा और 753 पास पूरे किए। वहीं पराग्वे सिर्फ 262 पास ही खेल सका, लेकिन उसकी 4-5-1 लॉ ब्लॉक रक्षा पंक्ति अभेद्य रही। 42वें मिनट में पराग्वे के जूलियो एनसियो ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जिसे 52वें मिनट में जर्मनी के काई हेवर्ड ने बराबर कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम के 102वें मिनट में जर्मनी के जोनाथन ताह का गोल VAR यानी कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने गोलकीपर पर फाउल के कारण रद्द कर दिया, जिसने मैच का रुख ही बदल दिया।
1: और अब हम आपको बताते हैं फीफा विश्व कप 2026 के ऐतिहासिक मुकाबलों की चार खास बातें। 72वें मिनट में गाकपो ने नीदरलैंड्स को बढ़त दिलाई, लेकिन 91वें मिनट में ईसा के हेडर ने मोराको को बराबरी दिला मैच में वापसी कराई। अगर जर्मनी बनाम पराग्वे की बात करें तो एनसीसो और हावर्ड्स के गोल से मुकाबला 1-1 रहा। अतिरिक्त समय में ताहा का विजयी गोल VAR से रद्द हुआ, फिर पराग्वे ने शूट आउट में बाजी मार ली। वहीं इतिहास में पहली बार जर्मनी विश्व कप में पेनाल्टी शूट आउट में हार गई। जर्मनी को विश्व कप इतिहास में पेनाल्टी शूट आउट का अजय राजा माना जाता था, लेकिन पराग्वे ने उन्हें हराकर वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार जर्मनी को पेनाल्टी शूट आउट में बाहर करने का रिकॉर्ड बना दिया। वहीं एक तरफ जर्मनी का रिकॉर्ड पहली बार टूटा तो नीदरलैंड्स के साथ उसका पुराना इतिहास फिर दोहराया गया। नीदरलैंड्स 2022 वर्ल्ड कप में भी अर्जेंटीना से पेनाल्टी पर हारी थी और अब मोरक्को ने भी उसे इसी तरह से पेनाल्टी शूटआउट पे मात दी। डच टीम के लिए यह लगातार तीसरी विश्व कप उपस्थिति है जो पेनाल्टी पर ही खत्म हुई है। वहीं अभी तक खेले गए मुकाबलों में गोलकीपरों का भी जलवा देखने को मिला। दोनों ही मैचों में मोरक्को और पराग्वे के गोलकीपरों ने दुनिया के दिग्गज फॉरवर्ड्स के सामने घुटने नहीं टेके। पराग्वे के कीपर ऑरलैंडो ने जर्मनी के शुरुआती शॉट्स रोक मैच का रुख बदला तो मोरक्को के यासीन बुनू निर्णायक पेनाल्टी रोक कर टीम के हीरो बन गए।
0: और अब बात करते हैं विंबलडन 2026 टेनिस मुकाबलों की। चौथी वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन पिछले दिनों विंबलडन 2026 के पहले ही दौर में सबसे बड़े उलटफेर का शिकार बन गए। विश्व रैंकिंग में 140वें स्थान पर काबिज फिनलैंड के अनजान खिलाड़ी ऑटो वेटानेन ने उन्हें हरा दिया। वेटानेन ने एक समय लगभग हार तय दिखने के बावजूद आखिरी सेट में मैच पॉइंट बचाकर हैरत अंगेज वापसी करते हुए 4 घंटे 21 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में शेल्टन को 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6 से हराया। यह वेटानेन के करियर के शीर्ष 20 खिलाड़ी की पहली जीत है। पिछले साल की उपविजेता रही अमांडा अनिसोमोवा ने एक बार फिर अपना अभियान शुरू कर दिया है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में उन्होंने पिछले दिनों पहले दौर में लगातार सेट में आसान जीत दर्ज की। छठी वरी अमेरिका की अनिसोमोवा ने मेसिडोनिया की क्वालिफायर लीना ग्रिचेस्का को 6-3, 6-2 से शिकस्त दे दी है। पिछले साल यही खिताबी मुकाबले में इगा स्वीटोक से 6-0, 6-0 से हार कर शिकस्त खाने वाली अनिसोमोवा ने 61वें मिनट में जीत दर्ज की है। अन्य मुकाबलों में मरिया सकारी ने क्लारा टासन को 6-3, 6-3 से, जबकि कैरोलिना प्लिस्कोवा ने टेरेजा वेलेंटोवा को 6-3, 6-4 से हराया।
1: और अब बात करते हैं हॉकी की। डिफेंडर अनमोल इका बेल्जियम दौरे पर 22 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे। 5 से 18 जुलाई तक होने वाला यह दौरा फ्रांस के कोच फेडरिक सोएज के मार्गदर्शन में टीम की पहली प्रतियोगिता होगी। यह इस साल के आखिर में होने वाले जूनियर एशिया कप से पहले तैयारी का एक अहम मौका होगा। दौरे के दौरान युवा भारतीय टीम यूरोप की कुछ सबसे मजबूत टीमों का सामना करेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के खिलाफ 2-2 जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी। गोलकीपर के रूप में विवेक लाकड़ा और कुणाल तेवतिया को टीम में जगह मिली है, जबकि अनमोल रक्षा पंक्ति की कमान संभालेंगे, जिसमें रोहित कुल्लू, चिराग रविंदर, प्रशांत बारला, संजीत टिकरी और मनी मारण भी शामिल हैं। मिडफील्डर की जिम्मेदारी एड्रोहिक इक्का, हरपाल, जीत पाल, मुकेश टोप्पो, मनु मलिक और ऋतिक लाकड़ा संभालेंगे। अग्रिम पंक्ति में अजीत यादव, प्रभदीप सिंह, अर्जुन हरगुडे, आर्यन सेस, लवनूर सिंह, मोहम्मद कोनैन दाद और गुरु सेवक सिंह शामिल हैं। अनमोल, एड्रोहित, यादव और कुल्लू उस टीम का भी हिस्सा थे जिसमें पिछले साल जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। कोच सोएज ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह दौरा हमें कई स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। पहला, खेल के मामले में तालमेल, रणनीति, अनुशासन और अहम पलों में दक्षता को बेहतर बनाकर, फिर समूह में एकता और आत्मविश्वास को मजबूत करके।
0: और अब बात करते हैं बैडमिंटन की।

0: बैडमिंटन विश्व महासंघ ने पिछले दिनों 2 साल के विश्व टूर कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट अगले साल फरवरी में और 2028 के जनवरी के अंत तक खेला जाएगा। इस साल यह टूर्नामेंट 13 से 18 जनवरी के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। अब यह अगले साल 2 से 7 फरवरी तक और 2028 में 25 से 30 जनवरी तक होगा।
1: और अब बात करते हैं शतरंज की। विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा आज से शुरू हो रहे जागरेब रैपिड एवं ब्लेड्स शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। ग्रैंड शतरंज टूर की इस तीसरी प्रतियोगिता में दुनिया के कई शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। गुकेश वाइल्ड कार्ड के जरिए इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, जबकि प्रज्ञानंदा भी दावेदारों में शामिल हैं। प्रतियोगिता में रैपिड के 9 और ब्लेड्स के 18 दौर होंगे। इसमें मैग्नस कार्लसन नहीं खेल रहे हैं।
0: और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। पंजाब के जालंधर में 23 से 29 जून तक आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में बिहार की महिला बॉक्सर प्रगति ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं 55 किलोग्राम भार वर्ग में नित्या पांडे ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के वीर ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कांस्य पदक हासिल किया, जबकि 67 किलोग्राम भार वर्ग में लकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। इस शानदार उपलब्धि पर बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाइयां दी हैं।
1: 3 दिनों तक चली 48वीं रुक्मणी देवी राज्य जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से करीब 150 तैराकों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर स्थित एक अकादमी में आयोजित हुई प्रतियोगिता में कुल 93 स्पर्धाएं हुई। इनमें पटना की राष्ट्रीय तैराक रिद्धि सिंह राणा 5 स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। रुद्र सिंह राणा ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर प्रभावित किया। रिद्धि और रुद्र के पिता पटना रेंज आईजी जितेंद्र राणा राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। मितुल कुमार और यश राज ने भी 5-5 स्वर्ण पदक जीते। सुशांत सिंह सहित अन्य खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत पटना जिला ओवरऑल चैंपियन बना। मेजबान मुजफ्फरपुर उप विजेता तो भोजपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा।
0: पटना जिला स्तरीय सुब्रत मुखर्जी कप फुटबॉल चयन प्रतियोगिता में आर्मी पब्लिक स्कूल ने 13 खिताब जीता है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुए इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग के अंडर 17 में आर्मी पब्लिक स्कूल ने लॉयला हाई स्कूल को 1-0 से हराया, जबकि अंडर 15 में लिट्रा वैली स्कूल को 3-0 से हराकर यह खिताब हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग अंडर 17 में आर्मी पब्लिक स्कूल ने माउंट लिट्रा जी स्कूल बाढ़ को 6-0 से हराकर खिताब जीता है। बालक वर्ग अंडर 17 के फाइनल में 40वें मिनट में आर्मी पब्लिक स्कूल के आशुतोष कुमार ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इस आयु वर्ग में अन्य मुकाबले में लॉयला हाई स्कूल ने माउंट लिट्रा जी स्कूल बाढ़ को 2-0 से हराया। बालक वर्ग अंडर 15 के फाइनल में आर्मी पब्लिक स्कूल ने मोहम्मद आबिद के 2 तथा अभिषेक सिंह के 1 गोल की बदौलत 3-0 से जीत दर्ज की। बालिका वर्ग अंडर 17 में आर्मी पब्लिक स्कूल की टीम लकी कुमारी के 5 गोल की बदौलत 6-0 से जीत दर्ज कर चैंपियन बनी है।
1: अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल गतिविधियां में। आइए अब सुनते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और खेल समीक्षक प्रेमचंद झा जी को। इनसे बात कर रहे हैं संजय किशोर। विषय है फीफा विश्व कप 2026।
2: आज हमारे बीच फोन लाइन पर उपलब्ध हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और खेल समीक्षक प्रेमचंद झा। सबसे पहले हम प्रेमचंद झा जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी हम राउंड ऑफ में चल रहे हैं। धीरे धीरे हम क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो टीमें खेल रही हैं वो क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ रही है। तो ये राउंड ऑफ तक जो खेल हुए हैं, इस संबंध में अभी तक आपने इस खेल को कैसे देखा है, कुछ अपने दृष्टिकोण से हमें बताएं।
3: राउंड रोबी का मैच खत्म हो गया जिसमें 48 टीमें खेल रही थी, अब नॉकआउट स्टार्ट हो गया जिसमें 32 टीमें खेल रही हैं। तो 32 टीमें में अभी तक 7 मैच खत्म हो चुका है और कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस और मैक्सिको, ये टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि 32 टीमों में से करीब 7 टीमें पहुंच गई है और 3 तारीख तक 9 टीमें और पहुंच जाएगी और 4 तारीख से आपका प्री क्वार्टर फाइनल जिसमें 16 टीमें खेलेगी वो स्टार्ट हो जाएगा।
2: तो ये तो हमारा शेड्यूल है जिसमें इतनी टीमें हिस्सा लेंगी और प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाएगा। खेल में जो रुचिकर बातें अभी

0: तक आपने देखी है, दर्शकों ने देखा है, उस संबंध में टीमों का कैसा विश्लेषण करेंगे आप?
1: देखिए, टीमों का विश्लेषण थोड़ा चौंकाने वाला रहा इस बार। खास करके आप यदि नॉकआउट का बात कीजिएगा तो नॉकआउट में 4 बार की विजेता जर्मनी टीम जिस तरह प्रेगो से हार करके बाहर हुई वो बड़ा विस्मयकारी था। प्रेगो एक बहुत शक्तिशाली टीम नहीं थी और जर्मनी को हम लोग खिताब के प्रबल दावेदार मान रहे थे। उससे
0: जी
1: एक एक का ड्रॉ हुआ और पेनल्टी शूट आउट में प्रेगुए का गोलकीपर ने इतना शानदार खेल दिखाया और 2 पेनल्टी शूट आउट बचा के उसने जर्मनी को बाहर कर दिया। बिल्कुल वही अपसेट हुआ है नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड भी खिताब की प्रबल दावेदार थी और मोरक्को ऐसी टीम ने, खास करके उनके 3 प्लेयर जो ऐसे थे, अशरफ हाकमी, इस्माइल और रहमानी, इन्होंने पूरी तौर पर नीदरलैंड को तहस नहस कर दिया और मैच एक एक से ड्रॉ छूटा और पेनल्टी शूट आउट में मोरक्को की टीम निकल गई। के
0: जी
1: अलावा भी आप यदि बात कीजिएगा तो एक बात आप याद रखिए कि ब्राजील का जो भी खिताब की प्रबल दावेदार है, 5 बार की विश्व विजेता टीम है, उसको मोरक्को ने एक एक से ड्रॉ पर रोक कर चौंक कर दिया था। बिल्कुल वही बात फिर हुआ इक्वाडोर और कुराकाओ। कुराकाओ जो एक बहुत छोटा सा देश है, इस फुटबॉल के लिए बिल्कुल नया नाम है, उसने इक्वाडोर को रोक दिया एक एक ड्रॉ पर। और सबसे चौंकाना वाला बात यह रहा कि जर्मनी की टीम का दुर्भाग्य इस बार पीछा नहीं छूटा। कुराकाओ जैसी टीम ने जर्मनी को लीग मैच पर 2-1 से हरा दिया।
0: ये लाजवाब जो उलटफेर देखने को मिले,
1: हाँ
0: ये अप्रत्याशित था। छोटे से देश ने
1: बिल्कुल
0: बड़ी
1: बिल्कुल
0: प्रबल
1: बिल्कुल
0: दावेदार टीम को रोक दिया, तो एक बार फिर से चमत्कारिक रूप से जो छोटी टीमें जिन पर हमें बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आगे बढ़ रही हैं जबरदस्त तरीके से।
1: नहीं, आप टैप करने को लीजिए ना स्पेन, जो खिताब की प्रबल दावेदार है इस बार, मैंने खेल विशेष है उस पर सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की है कि अर्जेंटीना से भी ज्यादा वोट स्पेन को दिया गया है और स्पेन को केप काटे की टीम ने लीग मैच में एक एक से ड्रॉ पर रोक दिया।
0: ये भी बड़ा अप्रत्याशित सा रिजल्ट
1: शानदार
0: है।
1: टीम है पुर्तगाल, जिसमें रोनाल्डो खेल रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस खेल रहे हैं, उस टीम को कांगो ने एक एक से ड्रॉ पर रोका है।
0: तो अभी मैच बहुत रोमांचक हो रहा है, जो
1: और
0: अभी
1: रोमांचक
0: आपने
1: होगा,
0: बताया
1: अभी रोमांच
0: ये
1: और
0: लाजवाब
1: बढ़ेगा,
0: था।
1: कई अप्रत्याशित परिणाम आएंगे।
0: जी, तो प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ते हुए भी हमें लगता है कि अभी कुछ दिनों में कुछ ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे, और प्री क्वार्टर फाइनल इससे भी लाजवाब, मजेदार और रोमांचक होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल
0: तो हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: फीफा विश्व कप 2026 पे इस विशेष बातचीत के बाद सुनते हैं तैराकी प्रशिक्षक अविनाश कुमार को। आप बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार स्विमिंग एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। हमारे आज के इस अंक में हम बात करेंगे तैराकी की। विश्व ओलंपिक खेल दिवस जून के महीने में मनाया गया और ओलंपिक एक ऐसा खेल है जिसमें तैराकी अपना ही एक विशेष स्थान रखता है और तैराकी की दुनिया में माइकल फेल्प्स का नाम तो हम सबकी जुबान पे चढ़ा रहता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे देश भारत से आज तक ऐसा कोई भी तैराकी के क्षेत्र में खिलाड़ी उभर कर सामने नहीं आया, जो बेहद ही दुखद है। हमारी भारतीय सरकार, हमारे खेल निकाय, खेल संस्थान लगातार ये प्रयासरत हैं कि आने वाले ओलंपिक में भारत से भी तैराकी के क्षेत्र में कोई उभरता चेहरा हो। तो आज इन्हीं विषयों पे हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अविनाश कुमार। आप तैराकी प्रशिक्षक हैं, आपका संबंध बिहार स्विमिंग एसोसिएशन, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अविनाश कुमार जी।
3: जी धन्यवाद।
2: बातचीत हम बहुत सारे विषयों पे करेंगे लेकिन शुरुआत इस जानकारी के साथ करना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को बताएं कि स्विमिंग की शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और इस खेल को आपने अपना करियर कब और कैसे चुना?
3: स्विमिंग की शुरुआत जब हम बहुत छोटे थे, करीब 12-13 साल के, तो मेरा घर है गंगा नदी के किनारे,
2: जी
3: और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको करीब 92-93 का। उस टाइम गंगा नदी ही हमारा, समझिए कि स्विमिंग पूल था, क्योंकि उस टाइम पटना में, मैं पटना में ही रहता हूँ, पटना में स्विमिंग पूल का बहुत अभाव था
2: जी।
3: उस टाइम, स्विमिंग पूल खिलाड़ियों के लिए कोई उपलब्ध नहीं था, तो गंगा नदी में ही मैंने स्विमिंग सीखा और वहीं से सीख के धीरे धीरे राज्य स्तर पे और

0: फिर राष्ट्रीय स्तर पे सहभागिता हमारी हुई, लेकिन जब और आगे राष्ट्रीय स्तर पे जब हमारी सहभागिता हुई तो वहाँ हमने देखा कि जो हमारे स्विमिंग का जो टेक्निक है वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम सिखाने के लिए कोई उचित प्रशिक्षक नहीं हुआ करते थे,
1: जी
0: खुद से जो भी समझ में आया खुद से किए। लेकिन वहाँ पे जब तैराकी का कैंप लगा, वहाँ पे जो कोचेज थे नेशनल कोचेज, वो उन्होंने हमारे तकनीकी को बहुत सुधार किया, और फिर समझिए 92 से हमारा ये तैराकी का सिलसिला चलता रहा जो आज तक जारी है।
1: वर्तमान में बच्चों के साथ आप प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो इसे आप किस प्रकार देखते हैं और इसका भविष्य आपको किस तरह नजर आता है?
0: देखिए, अभी आप तो स्विमिंग का इतना क्रेज बढ़ गया है कि हम आपको क्या बताएं। अभी जस्ट अभी समर वेकेशन खत्म हुआ है, तो ये एक महीना समझिए कि बच्चों के लिए कुंभ का सिचुएशन था। सारे पटना के स्विमिंग पूल्स भरे हुए थे, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्विमिंग सीखना चाहते हैं। और स्विमिंग सीखने के लिए सिर्फ ये नहीं, स्विमिंग तो एक स्किल है, लाइफ सेविंग स्किल है, लेकिन आजकल के जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर फैटी खाना खा के जो एकदम से मोटे होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्विमिंग बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। और स्विमिंग सीखने के बाद ये चाहे जो अगर जो अच्छा स्विमिंग सीख जाते हैं उनको फिर हम लोग धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं और उनको स्पोर्ट्स का वो फिर ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं।
1: आपने बच्चों में, युवाओं में स्विमिंग के प्रति बढ़ती रुचि का कारण बताया कि स्विमिंग के दौरान सावधानी बेहद जरूरी है। तो किस तरह की चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हैं? क्योंकि कई बार बच्चे या बड़े सीधे गंगा नदी में छलांग मार देते हैं स्विमिंग करने के नाम पे, या बहुत उत्साहित किसी से होते हैं और सीधे पानी में उतर जाते
0: जी
1: हैं। तो ऐसे में खुद युवाओं को या जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को किस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, स्विमिंग सीखने के लिए नदी और तालाब, चूंकि हमारा बिहार राज्य ग्रामीण क्षेत्र है, नदियों का जगह यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में है, स्विमिंग पूल पे सभी लोग जाके स्विमिंग सीख सके ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल हर जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानियां सभी जगह एक ही हैं कि अगर आप
1: जी
0: स्विमिंग सीख रहे हैं तो जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो स्विमिंग जानते हैं, उनके देख रेख में ही स्विमिंग सीखें, अन्यथा पानी का गहराई कहीं ज्यादा कहीं कम, इस कारण से आए दिन आप सुनती होंगी या न्यूज में भी देखती होंगी कि
1: जी
0: डूबने की घटनाएं हमेशा बढ़ती है, खास करके जून से अगस्त के टाइम तक गंगा नदी में या विभिन्न प्रकार के नदियों और तालाबों में डूबने की घटना सबसे ज्यादा
1: जी
0: होती है,
1: पानी का स्तर बढ़
0: क्योंकि
1: जाता है।
0: पानी का जलस्तर काफी धीरे धीरे बढ़ जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता और स्विमिंग के सीखने के चक्कर में लोग डूब जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अविनाश जी, ये बताएं कि राज्य में तैराकी के प्रति किस प्रकार की संभावनाएं हैं और इसके लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?
0: हमारे राज्य में तैराकी के लिए बहुत संभावना है, क्योंकि हमारे पास नदियों का जाल है, कमी है सिर्फ उचित प्रशिक्षक का और उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसकी। जैसे अभी मैं खुद बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़ा हुआ हूं और विगत 2018 से ये तैराकी का प्रशिक्षण हम लोग उसके माध्यम से बच्चों को और बच्चियों को देते आ रहे हैं। इसमें यह है कि गंगा नदी में एक छोटा बैरिकेटिंग, बांस बल्ली का एक बैरिकेटिंग करके 50 या 100 मीटर का स्विमिंग पूल, अस्थायी स्विमिंग पूल बनाया जाता है, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे लोग रहते हैं उनको खुद हम लोग स्विमिंग सिखाते हैं, जाके पंद्रह
1: जी
0: पंद्रह दिन 10 10 दिन का कैंप लगाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं।
1: बहुत अच्छी पहल, और आप खुद भी एक तैराक रहे हैं, ऐसे में महिलाओं और बालिकाओं को तैराकी में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके बारे में बताएं।
0: हमारे बिहार में भी जो अगर महिलाओं की बात करें तो अच्छे अच्छे महिला तैराक मतलब निकली हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीती हैं। अभी हाल फिलहाल में माही श्वेतराज हमारी महिला तैराक हैं जो सीनियर राष्ट्रीय तैराकी में 3 गोल्ड मेडल अभी जस्ट जीती हैं। उनका ये फल मिला है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उनको डायरेक्ट ASI के जॉब पे भी उनको ऑफर किया है, और ये एक हमारा उदाहरण है जिससे कि महिलाओं लोगों में जागरूकता बढ़ा है कि स्पोर्ट्स में भी अगर हम अच्छा करें हमारा इसमें भविष्य सुरक्षित है। लेकिन इनका प्रशिक्षण देने के लिए जो है कि स्विमिंग पूल में तो सुरक्षित है, लेकिन नदियों में और इस सब जगह देने के लिए महिला प्रशिक्षकों की थोड़ा कमी है। इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो और इन लोगों को अच्छा सुविधा मतलब कि प्रशिक्षण मिल सकता है।
1: आपने जैसा कि अभी बताया कि इसके प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल एक एसेट की तरह है जो बेहद ही आवश्यक है, तो हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में इन सुविधाओं की क्या स्थिति है, इस पे आप क्या कहेंगे?
0: पहले तो हम आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले स्विमिंग पूल का बहुत अभाव था, क्योंकि खुद मैं उस टाइम गंगा नदी में स्विमिंग सीखा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे बिहार के विभिन्न जिलों में स्विमिंग पूल का संख्या बढ़ते जा रहा है, वो भी ओलंपिक साइज स्विमिंग, जैसे भागलपुर में, पटना में खुद 2 स्विमिंग पूल बन के एक IS क्लब में और एक राजेंद्र नगर में स्विमिंग पूल 50 मीटर का बनकर तैयार हो रहा है, तो विभिन्न जिलों में 50 मीटर का जो ओलंपिक साइज पूल है वो बनकर तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में खिलाड़ियों को ये सुविधा मिलेगी।
1: किसी भी खेल के लिए फिटनेस एक सबसे अहम कड़ी है, तो फिटनेस को किस तरह से जो

0: बच्चे हैं या जो युवा हैं, स्विमिंग से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, वो किस तरह से अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, खान पान का, अपने एक्सरसाइज का, ट्रेनिंग सेशन का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं?
1: हाँ देखिए, तैराकी एक ऐसा चीज़ है कि ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा फिटनेस का चीज़ है, क्योंकि तैराकी में, तैराकी के अलावा ऐसा कोई भी गेम नहीं है या ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें कि आपके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट का एक साथ एक्सरसाइज होता है। स्विमिंग स्विमिंग को एक बेस्ट एक्सरसाइज के रूप में माना जाता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा हम बता रहे थे कि बच्चे लोग जो है ज़्यादा पेरेंट्स लोग स्विमिंग को रिफर करते हैं क्योंकि
0: जी
1: उसमें पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा डाइट प्लान यही है कि जो फैटी आइटम लोग हैं, जो बाहरी आइटम लोग बच्चे आजकल जो ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा का आइटम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और स्नैक्स वगैरह ज़्यादा, ये सब चिप्स वगैरह खा रहे हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल करें। और जो शुद्ध घरेलू खाना है, जैसे चना, सुबह का चना, मूंग, ये सब चीज़ जो घरेलू खाना है वो अगर बच्चों को दिया जाए तो एक पावर भी बूस्टर का काम करेगा और साथ में स्विमिंग तो खुद है ही फिटनेस, धीरे धीरे उनका बॉडी फिटनेस भी बनते जाएगा।
0: एक प्रशिक्षक के रूप में आप क्या सुझाव, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम से जुड़े श्रोताओं के लिए?
1: हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग लोग सीखें, बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी, महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्विमिंग सीखें, क्योंकि पहले ये था कि लोग स्विमिंग सोचते थे कि हम नदी में जाएंगे तभी डूबेंगे, लेकिन अब स्थिति यह है कि नदी आपके घर के पास आ जा रही है। अभी हाल फिलहाल राजेंद्र नगर कंकड़बाग इलाके में 2018 में 19 में इतना ज़्यादा मात्रा में बारिश हुआ कि 2 मंजिला मकान बिल्डिंग डूब गया था और हमने वो 8-9 दिन वहाँ पे रेस्क्यू का काम किया था, खाना और ये मेडिसिन वगैरह हम लोगों ने बांटने का काम किया था। उस दरमियान मैंने देखा कि जो जो घर के लोग हैं जो कि स्विमिंग के प्रति उनका रुझान नहीं था, उन लोगों ने समझा इस चीज़ों को कि स्विमिंग अगर आज हम मुझे आता तो मैं घर से बाहर निकल के कुछ काम कर सकता था, कुछ सामान ला सकता था, वो लोग घर में कैद हो चुके थे। इसलिए
0: जी,
1: स्विमिंग सभी को सीखना बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बातचीत रही अविनाश जी। हमारे साथ स्टूडियो में थे अविनाश कुमार, तैराकी प्रशिक्षक। आपने बहुत प्रमुख, बहुत सराहनीय और बहुत अच्छी बातचीत की हमारे श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रोचक तथ्य में फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इस बार फुटबॉल के इस महाकुंभ में केप वर्दे, कुराओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान जैसे देश पहली बार विश्व कप के मंच पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 3 अलग-अलग पुरुष फीफा विश्व कप, जो कि 1970, 1986 और 2026 की मेजबानी कर रहा है। 48 टीमों के कारण टूर्नामेंट 39 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 104 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा इसमें रिकॉर्ड 727 मिलियन का प्राइज मनी पुल है, जिसमें विजेता टीम को 50 मिलियन की भारी रकम मिलेगी। समय की बर्बादी रोकने के लिए थ्रो इन और गोल किक पर 5 सेकंड का काउंटडाउन लागू किया गया है। इसके अलावा मुंह छिपाकर विरोध करने या बहस करने पर खिलाड़ियों को तुरंत रेड कार्ड का नियम लागू किया गया है। इस बार के खेल में एडिशनल फेयर प्ले और ऑफसाइड डिसीजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और सेंसर वाली एडिडास ट्रायोंडा गेंद का इस्तेमाल किया गया है। श्रोताओं, अब खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए सवालों के सही जवाब। तो फटाफट बिना देर किए आपको पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को अभी हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है?
2: सही जवाब है, क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, पहला फीफा विश्व कप कब और कहां पहली बार आयोजित हुआ था?
2: सही जवाब है, पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था।
0: इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हैं खुशबू कुमारी मुसल्लपुर हाट पटना से, नीतीश कुमार ने पता नहीं लिखा है, वहीं अभिषेक कुमार हैं कदम कुआं पटना से और प्रकाश कुमार गायघाट पटना से। आप सभी श्रोताओं का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं व अपने सुझाव। अब आज के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है?
2: सवाल एक बार फिर से सुनिए, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है?
0: और दूसरा प्रश्न है, विंबलडन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और कब से कब तक चलेगा?
2: सवाल एक बार फिर से बता रहे हैं, विंबल्डन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है और कब से कब तक चलेगा?
0: इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके पास पूरे एक सप्ताह का समय है, जो कि है अगले मंगलवार की शाम तक। तो श्रोताओं, बिना देर किए आप फटाफट हमें अपने

0: जवाब चाहे तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से लिख भेजें। नोट करें पत्राचार का पता।
1: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
0: हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com।
1: और इसी के साथ इस खेल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आने वाले सप्ताह में खेलों की दुनिया में फीफा और विंबलडन अपने रोमांच को और आगे बढ़ाते हुए अधिक रोमांचित होने वाले हैं, और आप मौसम का भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे क्योंकि गर्मी के बाद अब बारिश शुरू होने वाली है या कहीं कहीं हो भी चुकी है, तो इसमें बीमार ना पड़े, स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखें। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मन्नान अली के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
0: और एलपी को
1: आज्ञा दीजिए, नमस्कार। परिक्रमा।

खेल परिक्रमा। अभी आप ये खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

Akashwadi at 90. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:20 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 6:30 पर और शाम 7 बजे का समय होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का।

7:30 पर प्रादेशिक समाचार और 7:47 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा।

संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे, 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें। कलाकार होंगे हरी हरन।

8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गई बा। ग्रामीण विकास मंत्रालय कहलस कि बीबीजी रामजी अधिनियम के तहत हर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। हमार संवाददाता बतौलन कि चालू वित्तीय वर्ष में ई योजना के लागू करे खातिर 95,692 करोड़ रुपया के प्रावधान कइल गइल बा। राज्य सरकार जी राम जी योजना लागू करे के लेके बड़ पैमाने पर तैयारी कइले बिया। योजना के चलावे खातिर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति के गठन कइल गइल बा। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 गो विभागन के सचिव लोगन के सदस्य के रूप में शामिल कइल गइल बा। एकरे साथे साथे जिलाधिकारी के जिला कार्यक्रम समन्वयक औरी उप विकास आयुक्त के अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित कइल गइल बा। तेल कंपनी सब 19 किलोग्राम वाला व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपया के कमी कइले बिया। इ कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 3,241 रुपया में मिले लागल बा। पासपोर्ट आवेदन फीस में आज से बढ़ती लागू हो गई बा। ई बढ़ती एकदम नया पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत कइल गइल बा। एकरा तहत 36 पन्ना वाला नया पासपोर्ट चाहे दोबारा पासपोर्ट बनावे के खर्चा अब 2,500 रुपया होगी। 60 पन्ना वाला साधारण पासपोर्ट चाहे दोबारा जारी पासपोर्ट के खर्चा अब 3,500 रुपया तय कइल गइल बा, जबकि तत्काल योजना के तहत ई 6,000 रुपया होगी। शिक्षा विभाग TRE 3 के तहत बहाल भइल उ विद्यालय शिक्षक लोगन के सेवा खत्म करे के निर्देश दिहले बा, जे लोग NIOS से 18 महीना के DLED कोर्स कइले बाड़े। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर डाही से जारी चिट्ठी में सब जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगन के तय प्रक्रिया के पालन करते

0: ऐसन शिक्षक लोगन के सेवा समाप्त करे और एकर जानकारी विभाग के तुरंते देवे के निर्देश दिहल गइल बा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कहले बाड़न कि राज्य के सब सरकारी अस्पतालन और स्वास्थ्य संस्थानन में सीसीटीवी कैमरा लगावल जाए, इनकर निगरानी कंट्रोल रूम से कल जाए ताकि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लोगन के समय पर मौजूदगी पक्का कल जा सके। पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत में मंत्री बतौलन कि अस्पतालन में दवाई के मौजूदगी और ओकर बंटवारा के नियमित मॉनिटरिंग होगी और लापरवाही मिलला पर संबंधित कर्मचारी लोगन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कल जाए। विधान परिषद के नव निर्वाचित सदस्य लोगन के आज शपथ दिलावल गई। विधान परिषद सभागार में कल गई कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्य लोगन के शपथ दिलवैलन। भाजपा से भोजपुरी फिल्म के जानल मालन अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शपथ लिहले। वही जे जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी शपथ लिहले। एकरा अलावा राजद के सुनील कुमार सिंह के भी शपथ दिलावल गई। राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा के 12 गो अधिकारी लोगन के तबादला कर दिया बिया, साथ ही 53 गो उप पुलिस अधीक्षक के भी ट्रांसफर कल गई बा। गृह विभाग ए बारे में अधिसूचना जारी कर दी हले बा। पंकज कुमार दाराद के विशेष निगरानी इकाई से हटा के पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक के जिम्मेदारी दिहल गई बा। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार के विशेष निगरानी इकाई के अतिरिक्त प्रभार सौंपल गई बा। प्रीता वर्मा के गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक बनावल गई बा। राष्ट्रीय जनता दल आज अपन 30वां स्थापना दिवस मनावल बा। यह मौका पर पटना में पार्टी दफ्तर में भयल कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई गो वरिष्ठ नेता लोग शामिल भइल। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद कहलन कि राजद देश में संवैधानिक मूल्यन के रक्षा खातिर लड़ाई जारी रखी। निगरानी जांच ब्यूरो के टीम मुजफ्फरपुर जिला के राजपुर थाना में तैनात एएसआई मुन्ना यादव के 8,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार के ले बिया। गिरफ्तार पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से केस में मदद करे खातिर घूस लेते रहन। आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनावल जात बा। ई दिन जनता के स्वास्थ्य के रक्षा खातिर डॉक्टर लोगन के समर्पण और बड़ योगदान के देखावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार एह मौका पर सब डॉक्टर लोगन के बधाई और शुभकामना दिहले बाणे। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में मानसून सक्रिय हो गई बा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहल गई बा कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार और समस्तीपुर जिला में तेज हवा के साथ बारिश होखे के संभावना बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म का ये गीत, राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में। इसके संगीतकार हैं प्रीतम।

फिल्म संगीत में आइए, आप सुनते हैं काइट्स फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। इसके संगीतकार हैं राजेश रोशन और गीतकार हैं नासिर फराज।

0: के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: सेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविध क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.1 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामी दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत् कालः अग्रे गमिष्यति। आगामी दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देश अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16 चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।

0: नमस्कार उदय भाई। की
1: नमस्ते मंगरू भाई।
0: उदय भाई, देखे छी हाथ में पंखा लेने, हौके थोके गर्मी सब तर बतर, पसीना से घामे पसीने।
1: मंगरू भाई, हमला के मत देखो, ये हाल जे बा सब आदमी के होके अलावा
0: से तो छे
1: आ हमें से कहतनी कि एकरो से बुरा हाल होके वाला बा कि पंखे ना दू दू गो पंखा एगो एनहू से जरे के पड़ी एगो एनहू से। यदि लूर ढंग हमनी के ये रहल तो दिन उहे आवे वाला बा।
0: ई तो बात ठीक है कहलो। एहि के लेल तो प्रयास हमरा सबके अपने करे पड़त। ई बात अलग छे कि अखन अहाँ के हाथ में पंखा है, हमरा हाथ में नहीं है, लेकिन जरूरत तो हमरो अछि आ जरूरत तो सबके छे।
1: मंगरू भाई, सबसे बड़ बात ये कि हमनी का ये बात सही बा कि अभी तो हमनी का पंखा से एकरा
0: संभाल
1: के
0: ले छी।
1: संभाल रहल
0: हाँ
1: बनी
0: हाँ
1: और जगह जगह जे बा अब तो बिजली पहुंच गई बा। ऐसे हमनी का आजकल नया वो एयर कंडीशन लगा के, कूलर लगा के, और ये गर्मी से बचे के एगो तात्कालिक उपाय, एगो जकरा कह देला कि तत्काल में तत्क्षण खातिर एक कर रहल बनी।
0: अस्थायी उपाय होइ छै जे कहुना के अपन काज चला लेलो से छै।

0: लेकिन जे हमनी का कर रहल बनी और जैसे कर रहल बनी वो आवे वाला समय खातिर बड़ा खतरनाक मंगरू भाई संकेत
1: चिंता के स्थिति
0: हाँ दी और बन रहल बा वही तरह के स्थिति
1: जे तापमान बढ़ रहा है वातावरण में जे एते गर्मी बढ़ रहा है वही सब के पाछा कतौ न कतौ हम सब अपने जिम्मेवार छी आ अई के लेल जे छे से प्रयास से हो हमरा सब के अपने स्तर पर करना पड़ता
0: निश्चित

0: ओहिसँ धर्म की होइ छै। तऽ सबसँ जे हमरा अपना बुझा रहल अछि कि गाछ वृक्षसँ जे हमरा सबके लाभ होइए ओ सबसँ बड़का पुण्य हमरा सबके भेटैए। पहिल बात, भविष्य पुराण आ मत्स्य पुराण मे सेहो कहल गेल छै कि गाछ वृक्ष लगेने ओहने पुण्य भेटै छै जेनाकि एकटा बड़का कोनो यज्ञ केलहुँ आ ओकर पुण्य प्राप्त होयत। गाछ वृक्षसँ यदि देखी जे हमरा सबके की लाभ है, तऽ शुद्ध ऑक्सीजन तऽ भेटते अछि, गाछ वृक्ष जे छै से प्रदूषण के कम करै छै, माटिक कटाव के सेहो रोकै छै आ तापमान के नियंत्रित करैए, तापमान के कम करै छै। देखबै जतय जंगल रहै छै ओहिठाम वर्षा बेसी होइ छै, तऽ ई सब तऽ छैहे, संगे संगे जंगल जे छै गाछ वृक्ष सँ भरल जंगल ओ वन्य प्राणी के आश्रय स्थल छै, ओकरा हुनका सबके रह के घर द्वारि छै, आ संगे ओहिसँ हमरा सबके बहुत रास औषधीय जे दवाई माने औषधीय पौधा जे छै से हमरा सबके ओतऽ से भेटैए, जाहिसँ बहुत रास व्याधिमे काज अबै छै।
1: मगरो भाई, ई तो एक सामान्य हमनी का बात कहनी है, करे के धर्म से हमनी का जोड़ देनी, वृक्ष लगाएं और पुण्य कमाएं, लेकिन सच में यदि करे वैज्ञानिक तथ्य पर थोड़ा सा सोची तो रुआ समझ में आई कि वृक्ष लगावल एक तरह से जीवन के स्थापना के लिए याद बर हुआ हमने कि हाँ पीपर के गाछ में घाट टंगाए, कहल जाए कि पीपर के पेड़ के कभी भी ओकरा के नुकसान न पहुंचावे के चाहे, जहां भी पीपर रहे ओकरा के हमने का सुरक्षित करी। घाट लगावे के मतलब ये भइल कि घाट टंगा जाए, तो ऐसा जगह पर जहां कोई भी इस तरह के आयोजन होके ओकरा के वो पेड़ के सुरक्षित माने। लेकिन एक वैज्ञानिक तथ्य देखी कि वो पीपल के पेड़ पीपल के हर पत्ता जे बा वो ऑक्सीजन उत्सर्जन के कार्य करेला, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित करके, और ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु। हमनी के वायुमंडल में लगभग 21% के जो ऑक्सीजन बा, यह मात्रा में थोड़ा भी असंतुलन हमनी के जानत नहीं कि हमनी के यहाँ लगभग 78% हमनी के यहाँ नाइट्रोजन बा वातावरण में, कार्बन 0.03% के आसपास, लेकिन थोड़ा ही असंतुलन जीवन के असुरक्षित करे। तो यह बड़ चीज के यदि हमने पीपर के देखी, बड़ पाकड़ देखी, तो उकड़ा के हमने का लगा के कोनो पेड़ लगावत नहीं की, अपना जीवन पर खुद एहसान कर रहा,
0: अपना आप पर एहसान कर रहा है। हाँ, उना ना मान्यता छे जना बड़ गाछ छे, बट सावित्री वाला पावन त्यौहार जे अपना सबके संस्कृति में है, ओ बड़ पूजा कयल जाय छे, जैसे कि ओ एकटा संदेश छे जे ई गाछ कतौ ने कतौ हमरा सबके जीवन दैत अछि, हमरा सबके बचबैत अछि, त ओहि गाछ के पूजा हेबाक चाही।
1: देखियौ, एही से जोड़ दिया है कि औरत लोग वही से ओजा पूजा करे लगे, कि यदि जौना जगह रुआ पूजा कर तो वह पेड़ के रुआ नुकसान पहुंचावे, थोड़ा रुआ आत्मे आत्मिक कष्ट होई। तो एह से इस सब चीज के जोड़ल गेल कि रुआ जे बाय करे के ओ तरह से करी। लेकिन मंगरू भाई, हमरा दुख बा, हमें इसे पहले कहनी है, ई बात हमरा दुख ही बा कि आज के समय में हमनी का एह तरफ से एकदम मुंह मोड़ लेले बनी। भौतिकवाद के जे पराकाष्ठा कोनो चीज के होला, वह चरण में हमनी का जी रहल बनी, जब हमनी खातिर ना पीपर के महत्व बा, ना बर के महत्व बा, ना कोनो कोनो पेड़ के महत्व बा। और आज के समय अब एह तरह से हमनी का पेड़ के नुकसान पहुंचा रहल बनी कि अब धीरे धीरे वातावरण में कार्बन के मात्रा बढ़ रहल बा, और उ पर्यावरणीय असंतुलन के मुख्य कारक के रूप में अब सामने आ रहा है। तो आवश्यकता बा कि पेड़ लगाई, उ तो ठीक बा, पुण्य तो पुण्य बा, लेकिन रउआ अपना खातिर जीवन लगाए। हाँ। अपना आवे वाला पीढ़ी खातिर हमनी का अपना लड़का के कितना लाड़ दुलार प्यार से राखी ले उनका के कल यदि हमनी का एक स्वस्थ पर्यावरण ना दे सके, उनका के एक स्वस्थ वातावरण ना देखे जाए, तो आखिर उनका के खिलौना, उनका के फलना, उनका के घर, उनका के जमीन किन के देला के मतलब का बा?
0: आ नहीं उदय भाई जी, गाछ लगवा वाला बात छे, इहो तो बात छे कि गाछ से आमदनियो तो होई छे।
1: हाँ,
0: आमदनी खातिर लगाओ।
1: हाँ हाँ, वही हाँ, वो उद्देश्य पूरा हुए,
0: आमदनी खातिर लगाओ, हो सकता है कि उद्देश्य पूरा भर रहा है कि खाली हाँ गाछ के कटने जा रहा है तो वैसे तो दो तरफा नुकसान भ रहा है, वर्षा नहीं भ रहा है, जमीन बंजर भ रहा है,

0: संगे संगे धरती के जे जल छै जकरा कि भूजल स्तर कहल जाइ छै ओ नीचा जा रहल है वर्षा नहि होके कारण सब तो ई सब एतेक बड़का बड़का नुकसान छै आ एहि सबसँ बच सकै छी की केला सा तो गाछ लगेला सा गाछ लगा लिया ओकरा नमहर कर दियो यदि हर आदमी ई ठान ले कि हमरा अपना पूरा जीवन में कम से कम 8-10 गाछ लगा कर ओकरा नमहर कर देबो के पहिल पुछ के नमहर कर देबो बस ऐसे बेसी के जरूरत नहीं
1: देखी ना हमनी के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार वहां का कहिले जे एक पेड़ जे बा लगाई उ माई के नाम पर एक पेड़ माई के नाम तो माँ के याद करी तो एक पेड़ लगाई तो ई जे बा एक संकल्पना है कि माई तो कोई के जीवन से भुला नहीं कह सकते तो यदि लगाओ तनी तो ओकरा के पेड़ के माँ के स्मृति हाँ निश्चित
0: वही सब से पर्यावरण के जैसे से कल्याण निश्चित
1: तो यदि थोड़ा सा बारे में हमने के सजेस्ट होके सोची और ए तरह से जो अंधाधुंध विकास बा ओकरा से थोड़ा सा ओकरा के संतुलित विकास के दिशा में बढ़ी तो बेहतर मानवीय जे बा हमनी का जीवन भी मिल सकेला और हमनी का बढ़िया ढंग से आज हमनी का बहुत बहुत जे तरह तरह के कष्ट झेल रहल बनी श्वसन समस्या ओकरा पीछे हमनी के ई कारण बा कि हमनी का बहुत ही असुरक्षित पर्यावरणीय माहौल में रह रहे
0: कतौ ने कतौ अच्छा कमी से प्रदूषण पसरै छै आ प्रदूषण द्वारा हम सब एते सांस संबंधी बीमारी से व्याधि से परेशान छै
1: निश्चित निश्चित
0: एक ठप कतौ पढ़ने रहिए उदय भाई कि जेना एखन आमक मास चलि रहल अछि लोग आम खाइ छथि आम के आठी के कचरा में फेंक दै छथिन तऽ कहल गेल रहै कि आम के आठी के जमा कर लिया आ जतऽ कतौ जा रहल छी अपन गाड़ी से जा रहल छी पांव पैदल जा रहल छी तऽ जे रास्ता काते खाली जगह छै तैमे फेंकने जाउ ओकरा ओकरा जमा कऽ कऽ ओहिमे फेंकने जाउ बरसात के समय मे ओहिमे सँ यदि आधो आधी जते आठी फेंकलहुँ हैं आधो आधी आठी एक चौथाइयो आठी से गाछ निकल कऽ ओ नमहर भऽ गेलै तऽ अपने आप वृक्षारोपण भऽ
1: जाइ ई समय बा इहे समय है जब पेड़ लगाओल जाला एहि समय में पेड़ लगा के आ पेड़ जे बा बरबार पावेला तो आवश्यकता बा कि हमनी का यह दिशा में सोची जरूर और काम करी और बेहतर जीवन के संकल्पना जे बा हमनी के ओकरा के प्राप्त करे में अपन प्रयास करी। मंगरू भाई गीत एगो सुने के कलाकार बनी सुरेंद्र नारायण यादव वहां से सुने के ई विद्यापति गीत
0: सुना जाए।

0: मंगरू भाई, सुरेंद्र नारायण यादव जी के स्वर में विद्यापति के पद रहल, अच्छा लागल। आगे भी हाँ, यहाँ से और भी हमने के गीत सुनल जी। अभी अपना कार्यक्रम में एक वार्ता बा पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं की भूमिका।
1: हाँ, एखन तो हम सब गाछ वृक्ष के बारे में
0: बात करते
1: हैं, तो जीव जंतु केना पर्यावरण के संरक्षण दै छथि, ओहिमे हुनकर की भूमिका छै,
0: ए बारे में ई वार्ता बा वार्ताकार बने श्री राकेश कुमार जी, तो सुने के वहाँ के ई वार्ता।
2: आज हम ऐसे विषय पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे अस्तित्व से है, अर्थात जो संसार के अस्तित्व का आधार है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं की भूमिका। पर्यावरण का तात्पर्य है परिजोड़ आवरण, अर्थात वैसा आवरण जो हमारे चारों ओर आवृत है। पर्यावरण के विषय में अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख है नियतिवादी अथवा निश्चयवादी अवधारणा, डिटर्मिनिज्म। यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानते हुए मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर मानता है। दूसरा है संभववादी अवधारणाएं, पॉसिबलिज्म। यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए कहता है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं प्रकृति के हर प्रकार का परिवर्तन मानव द्वारा किया जा सकता है। तीसरी अवधारणा है नव नियतिवादी अवधारणा, नियो डिटर्मिनिज्म। यह अवधारणा उपर्युक्त दोनों ही अतिवादी अवधारणा का खंडन करते हुए मानता है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है, इसलिए मानव को चाहिए कि मानव प्रकृति की सीमाओं को समझे और अपने विकास की नीतियों का निर्धारण करे। चौथी अवधारणा है कृतिवाद, वोलेंटरिज्म। इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक अथवा संभाविता स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है। पांचवी अवधारणा है मानकी दृष्टिकोण, नॉर्मेटिव अप्रोच। इस अवधारणा के अनुसार मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों को सर्वोत्तम अथवा आदर्श स्थिति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। छठी अवधारणा

करना है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच। इस अवधारणा के अनुसार मानव को पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक मानते हुए पर्यावरण के साथ उसके संबंधों को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित करता है। तथ्यों और अवधारणाओं के आलोक में कहा जा सकता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध, इंटरलिंक्ड होते हैं। भौतिक तत्व यथा स्थान, स्वरूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज एवं मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं और उसके सु अवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। भारतीय सनातन वांग्मय के अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से इसे समझा जा सकता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह सूक्त हमारे धरती और पर्यावरण को परिभाषित करता है। वस्तुतः पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अजीवित तथा जीवित दोनों संघटकों को सम्मिलित कर इसे दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। नंबर एक है भौतिक पर्यावरण और नंबर दो है जैविक पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण में जितना महत्वपूर्ण योगदान मानव का है उतना ही अत्यधिक योगदान जीव जंतुओं का भी है। प्रकृति का संतुलन जीवों के बिना असंभव है। प्रकृति का हर एक तंत्र, चाहे वो जंगल हो, नदियां हो, महासागर हो, हवा हो, पानी हो, वृक्ष हो, कृषि हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अथवा मानव ही क्यों न हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या यूं समझे कि प्राणी मात्र के साथ जीव जंतु एक जाल की तरह बंधे हुए हैं। पर्यावरण की हरियाली और संतुलन दोनों को एक सूत्र में बांध कर बनाए रखने में उन छोटे छोटे जीवों, कीटों सहित विशालकाय वन जीवों का अमूल्य योगदान है। एक सामान्य तितली से लेकर हाथी तक हर जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जीव जंतु, मानव और पर्यावरण, ये तीनों ही संतुलन बनाकर इस सृष्टि को चलाते हैं। जीव जंतु, मानव और पर्यावरण, ये तीनों ही संतुलन बनाकर इस सृष्टि को चलाते हैं। जीव जंतु और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। जीव जंतु हमारे लिए भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे अनेक आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जीव जंतु हमारे कृषि में हमारी मदद करते हैं। जीव जंतु ही विभिन्न रूपों में हमारे परिवहन का साधन होते हैं और कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावे पर्यावरण को संरक्षित रखने में वैज्ञानिक अनुसंधान में भी सहायक बनते हैं। साथ ही साथ मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, गाय, मधुमक्खी, मछली, मुर्गा, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सुअर, इन पालतू पशुओं द्वारा हमें दूध, अंडे, मांस सहित आवश्यक खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। साथ ही साथ वस्त्र हेतु कच्चा माल यथा ऊन, चमड़ा, रेशम जैसे उत्पाद सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। परिवहन और कृषि हेतु बैल, घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट जैसे जानवर हमारे जीवन में महती भूमिका निभाते रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिकित्सा अनुसंधान में चूहों और बंदरों जैसे जानवरों का उपयोग बीमारी को समझने और नई दवाइयों की खोज में सहायक होते रहे हैं। पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ जैसे कीट परागण में हमारी मदद करते हैं, जो फलों, फूलों और सब्जियों के लिए अति आवश्यक है। जानवर सिर्फ जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी हमारे लिए, पर्यावरण के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी होते हैं। किसी भी जानवर का शव न केवल अन्य मांसाहारी जीवों को भोजन प्रदान करता है बल्कि इसके साथ ही आसपास उगने वाले पौधे के विकास में भी योगदान करता है, जो कि अनेक शाकाहारी जीवों और उनके शिकारियों को भी आकर्षित करता है। मांसाहारी जीव यथा बाघ, शेर, भेड़िया आदि जानवर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं। हाथी अपने रास्ते के पेड़ों को गिराकर छोटे छोटे पौधे को बढ़ने का मौका देते हैं। व्हेल स्तनधारी जीव जो मछली की तरह दिखती है अपने मल के माध्यम से समुद्र में फाइटोप्लांकटन के विकास में मदद करते हैं, जो वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं।
मेढक, छिपकली और पक्षी हानिकारक

0: कीटों को खाकर प्राकृतिक तरीके से फसलों की रक्षा करते हैं। मेंढक जैसे जीव वायु और जल प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इनकी आबादी में कमी प्रदूषण के उच्च स्तर का संकेत देती है। हमिंगबर्ड, सनबर्ड, मधुमक्खी, तितलियां जैसे जीव जंतु परागण, बीज फैलाव, पोषक तत्व चक्रण और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखकर पर्यावरण में योगदान करते हैं। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता, कबूतर जैसे अनेकानेक पक्षी तथा भालू, बंदर, हाथी जैसे जानवर फलों को खाते हैं और घूम घूम कर मल का त्याग करते हैं। इसी मल के माध्यम से बीज दूर दराज फैल जाता है, जिससे नए जंगल पैदा होते हैं। केचुए, चींटियां आदि जैसे जीव मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिस कारण इन्हें हलवाहा जीव भी कहा जाता है। ये जीव इस माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन की मात्रा को संतुलित करते हैं, जिस कारण पर्यावरण के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। गिद्ध, लकड़बग्घा और कुछ कीट मृत और सड़ते हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। एक छोटी सी चिड़िया एक दिन में करीब 1000 कीट खा जाती है, जिस कारण फसलों का रक्षण होता है। एक दीमक के टीलों में सूक्ष्म जलवायु तैयार होता है, जो तापमान को नियंत्रित करता है। व्हेल स्तनधारी जीव अपने शरीर में कई टन कार्बन संग्रहण करती है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो समुद्र में डूब जाती है, जिस कारण कार्बन हजारों वर्षों तक महासागर में सील हो जाता है, जो व्हेल कार्बन सिंक कहलाता है। गाय भैंस के गोबर से जैविक खाद तथा गोमूत्र से प्राकृतिक कीटनाशक बनता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जीव जंतु पर्यावरण के मौन प्रहरी हैं। यह केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बल्कि पृथ्वी की संतुलन प्रणाली के मूल आधार हैं। अगर ये जीव जंतु ना हो तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संवर्धन जैसे अवधारणाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तो मगमिश्र ने कहा है कि पृथिव्याम यपि जीवा परस्परम पोषणाय भवन्ति, अर्थात पृथ्वी पर जो भी जीव हैं वो एक दूसरे के पोषण करता है। इसलिए तो पंचतंत्र में लिखा है कि वृक्षसम चित्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्दवेम गम्यते स्वर्गी नरकः केन गम्यते, अर्थात पेड़ों को काटने वाले को, पशुओं की हत्या करने वाले को और मिट्टी में बेवजह रक्त को मिलाने वाले को स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं, पारिस्थितिकीय तंत्रों और मानव मूल्यों को समझें और पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतु का संरक्षण करें।
1: उदय भाई, कतेक बढ़िया जानकारी भेटल। हाँ। जीव जंतु पर्यावरण संरक्षण में अपन भूमिका दै छथि।
2: ई वार्ता रहल, वार्ता के विषय हमनी के रहल पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं की भूमिका। वार्ताकार रहनी है राकेश कुमार जी,
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद दिया यहाँ के। और मगरू भाई,
1: हाँ,
2: एगो गीत और हो जाए। कलाकार बने सुरेंद्र नारायण यादव,
1: सुने जी।

0: भाई, सुरेंद्र नारायण यादव जी रनी है। हमनी के बिहार के ये खूबसूरती बा क्षेत्रवार जे बा वहाँ के आपन आपन ओकर माटी के सुगंध ओकर ओकर भाव ओकर स्वागत अतिथि सत्कार के तरीका सब सब अपना तरह से बा अच्छा लागल।
1: या तो संस्कृति छे
0: धन्यवाद दिया सुरेंद्र नारायण यादव जी के। समय चौपाल के संपन्न हो गई बा, थोड़ा देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत के जी। मंगरू भाई, खेती गृहस्थी में हमने के सुने के पहले प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस
1: सुने छी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हाँ, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं। हाँ। बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
3: जानकारियों का ही अभाव है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी,
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं, ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व।

0: नहीं रह गई जी। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके समर्थ नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
1: जी।
0: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
1: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और उस जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां सब बढ़ रही है, तो उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: जानकारी युवा साथियों को थोड़ा डिस्करेज कर रहा है।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
1: फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी, अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जो आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी

0: तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का?
0: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी जी
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल। मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा हाँ। उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी
1: भी
0: इच्छा, कहीं भी हाँ। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, हाँ। सब कुछ समान है,
1: हाँ।
0: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: अच्छा,
0: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशनल है जिसको वो समझाता है बताता और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में

0: बंद हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
1: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: मगर भाई,
4: हाँ।
3: अभी हमने का सुनत रही है प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। समय बाकी कुछ खेती बाड़ी के बातचीत कही जाओ।
4: उदा भाई, जहाँ खेती बाड़ी के गप आवई है, तो जहाँ खास कर खाद के संदर्भ में गप करी, तो दिमाग में कितना बात आवई है कि बाजार से जाब कि खाद कीनब आ जे फसल लागल छे ओ बढ़िया पैदावार लेबा के लिए वही खाद के उपयोग करो।
3: अपने लड़का ही याद बरुआ है,
4: वो सब केना बिसरल जा सके।
3: वो बेरा हमनी की है एक बजारे से खाद किन के चले जो उन खेत में का
4: उस समय में तो ओकर प्रचलन ही नहीं चले है।
3: तो ये बात तो हमें से कहनी है कि वो दौर में भी हमनी का उपज लेते रहे। ये बात सही बात कि कम ले थोखे या थोड़ा मात्रा होकर भले कम हो तो उपज के, लेकिन जोन भी लेते रही वो पोषण की गुणवत्ता युक्त होते रहे। लेकिन बदलत दौर में, हालांकि शुरुआत तेकर हरित क्रांति के समय से ही भेल, लेकिन बाद में हमनी का एकरा के जैसे होला नू कि नकल में जे बुद्धि के इस्तेमाल तनी कम कैल गए, तो अब वो भइल का कि हमने होड़ में लाग गईनी के ओकरे के माल लेनी वही रासायनिक उर्वरक के कि ये हमनी के सब कुछ बजौना से हमने उत्पादन कर सकेले, और ओकर दुष्परिणाम मंगरू भाई आवाज के पीढ़ी झेल रहल भी है कि आज जब अब दुनिया के बहुत सारा देश बहुत सारा भोज्य पदार्थ जो हमने के बा वहाँ के वहाँ का कहते नहीं कि ऐसे नहीं है, चाहे वो ऐसे नहीं है कुछ हो बात, तो इस आवश्यकता बा कि बहुत सारा देश में यह तरह से अब हो रहा बा, वहाँ भी लोग उर्वरक पर ज़्यादा निर्भरता रख रहा बड़ा, तो आवश्यकता एक बा कि अब जे बा हमने का एक तो बीमारी हमने का खरीद रहल बनी यह तरह के रासायनिक उर्वरक के माध्यम से। रसायन तो रसायन है,
4: रसायन तो रसायन
3: है, कोनो भी रसायन के रुआ शरीर पर प्रभाव पड़े,
4: नकारात्मक प्रभाव जैसे से तो पड़े
3: निश्चित निश्चित, और ओहू में यदि वो केमिकल जे बा फैक्ट्री से उत्पादित होके, तो ऐसे आवश्यकता बा कि हमने का जे भोज्य पदार्थ उत्पादित करी ओकरा के गुणवत्ता और पोषण के दृष्टिकोण से ओकरा के बढ़िया होके, और एहवे मंगरू भाई हमनी का जे पहले के हमनी का परंपरा रहे जो हमनी का कंपोस्ट गोबर खल्ली उल्ली के उपयोग करके जो खाद खेत में दी, खेत के भी उर्वरा शक्ति बनल रहे,
4: हाँ।
3: और हमनी का खातिर भी वो शारीरिक रूप से कहीं से भी नुकसान दे, हाँ हाँ, और यह संदर्भ में हरा खाद भी जे
4: हरियर खाद,
3: हाँ
4: जहाँ हरियर खाद की गप कर है तो हरियर खाद जे छे से एक जैविक विधि छे,
3: हाँ हाँ,
4: एकर उद्देश्य छे कि माइट के उर्वरा क्षमता बढ़ावे आ संगे संग जे नमी हुई छे माइट में वही नमी धारण करे के क्षमता सेहो बढ़े।
3: अच्छा,
4: आ जहाँ ई दोनों बढ़ते तो मुख्य फसल के लिए प्राकृतिक नाइट्रोजन उपलब्ध भ जाए।

0: आ खाद सँ की होइ छै, नाइट्रोजन ने भेटै छै गाछ के। तऽ ई माटि के उपजाऊ बना कऽ फसल के पैदावार बढ़ाबै मे बड बेसी प्रभावी होइया। ई जे हरियर खाद छै ताहि के बारे मे कहै छी।
1: हमरा तो खूब याद बा कि हमनी के लइकाई में जब खेत जोता है तो हमनी के यहाँ मूंग खूब होला।
0: मूंग होइ छै।
1: हाँ, तो मूंग के का कइल जाए कि मूंग के फली जब पाक जाए, कार करिया हो जाए, तो मूंग तोड़ के मूंग के जे
0: गाछ
1: गरब,
0: रहै छै।
1: हाँ, जे पौधा जे बा ओकरा के ओही में ओही में जोत दिया।
0: जोत देल जाइ छै।
1: और ई सब जे मूंग बा, ढैंचा बा, सनई बा, उड़द बा, लोबिया बा, ई सब जे बा एकरा में नाइट्रोजन जे बा अवशोषित करे के क्षमता बड़ा ज्यादा, तो खेत का एगो प्राकृतिक पोषण भी मिल गए, उनकर खेत के भी ताकत बाचल रहल, आ हमनी का सस्ता भी पड़ल। जैसे रुआ खरीद के कोनो खाद बाजार से ले आई और कोनो ऐसा फसल लगाई जोना से ओकर फसल भी ले ली, ओकर लाभ भी ले ली, आ ओकरे से खादर भी बना ली,
0: खाद बना ली।
1: तो ई जे बा समझी कि आम के आम आ गुठली के दाम वाला हिसाब किताब बा। इससे मंगरू भाई हम तो ये कहे कि हरा खाद जे बा ओकर प्रयोग हमनी का जरूर करे के चाहिए। ये खेत के भौतिक दशा में सुधार खातिर बहुत आवश्यक भी बा और प्राकृतिक पोषण पौधा का प्राप्त हो जाला एकरा से।
0: आ ओइ से जे अनाज उपजते से गुणवत्तापूर्ण उपजते, आ ओकरा खेला से जे शरीर में बहुत रास जे बीमारी से पसल के डर रहै छै से सब खत्म है। तो हरी खाद जे छै एकर उपयोग बेसी से बेसी होय। ई माटि के भुरभुरा बनबै छै, जहन माटि भुरभुरा रहत तऽ जड़ि धरि हवा आ नमी पहुँचतै। कोनो भी जे मुख्य फसल छै ओकर जड़ि मे नमी आ हवा पहुँचतै आ निश्चित रूप सँ जे छै से पैदावार बढ़तै, उत्पादन बढ़तै। उदय भाई, गीत सुनल जाए।
1: हाँ, सुनै के
0: सुरेंद्र नारायण यादव से सुनै छी, झूमर
1: सुनल जाए।

0: मंगरू भाई, अंतिम रूप से धन्यवाद दियो सुरेंद्र नारायण यादव जी के,
1: एक
0: से
1: एक सब गीत के लिए।
0: हाँ हाँ, समय संपन्न हो गया अपना कार्यक्रम के, अब चले गए।
1: नमस्कार उदय भाई।
0: नमस्ते मंगरू भाई।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट .gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: Player at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीवी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी

0: में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री कुमार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना आज से शुरुआत की जा रही है। इससे देश भर के जो श्रमिक हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। साल में 125 दिन काम देने का इसमें प्रावधान किया गया है और आपदा से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ, मौसम आधारित योजना बनाने का ये अधिकार ग्राम

0: इसमें प्रावधान किया गया है और आपदा से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ मौसम आधारित योजना बनाने का ये अधिकार ग्राम पंचायत को दी गई है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी विशेष जोर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बीवी जी राम जी योजना लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
1: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है।
2: विकसित भारत जी राम जी योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। समाचार कक्ष से निदेश श्री।
1: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत और कुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
3: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
1: मंत्रिमंडल ने 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में खुलेंगे। कैबिनेट ने राज्य के 31 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 34,59,00,000 रूपए की लागत से गन्ना यांत्रिकीकरण योजना और 37,93,00,000 रूपए की लागत से एक विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 29,56,00,000 रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बिहार के 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई से 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा को मंजूरी दी। यात्रा के आयोजन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर 2,50,00,000 रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी ताकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग होगी तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उनपे हम CCTV कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। अगर कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जब से स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूं, कई समस्या सुनने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक करें।
1: स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य के NH और SH पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यों को शपथ दिलाई। भाजपा से भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने शपथ ली। वहीं जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति

0: और ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने शपथ ली। इसके अलावा राजद के सुनील कुमार सिंह को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे ऐप सैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बांका जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रजौन, कटोरिया और थोरैया थाना क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही 53 पुलिस उपाधीक्षक DSP का भी स्थानांतरण किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पंकज कुमार तारात को विशेष निगरानी इकाई से हटाकर पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि राजद देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के राजपुर थाना में पदस्थापित ASI मुन्ना यादव को 8,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से केस में मदद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बगहा की एक अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में फरार चल रहे 40 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
1: जून माह समाप्त हो चुका है, जिले में मॉनसून अब तक नहीं पहुंचा है। इसके चलते खरीफ की खेती प्रभावित हो रही है। सामान्यतः 15 जून तक जिले में दस्तक देने वाला मॉनसून इस बार एक पखवारे से अधिक की देरी से चल रहा है। बारिश नहीं होने से जिले में धान की बुआई पिछड़ गई है। कृषि विभाग ने इस साल 90,124 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए करीब 9,000 हेक्टेयर में बिचड़ा तैयार किया जाना था, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक बिचड़ा आच्छादन नहीं हो सका है। किसान पंप सेट के सहारे खेत तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ रोशन कुमार के अनुसार प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो के कारण मॉनसून कमजोर पड़ा है, जिससे वर्षा में कमी आई है। उन्होंने किसानों को धान के साथ साथ मक्का, मड़ुआ और अन्य मोटे अनाज जैसी कम पानी वाली फसलों पर भी ध्यान देने की सलाह दी है। बिहार सरकार की अभिनव पहल के तहत प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के अवसर पर नवादा जिले की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम महिला हितैषी ग्राम पंचायत रही, जिसके कारण ग्राम सभाओं में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर महिलाओं ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं सशक्तिकरण योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा किया।

0: और पंचायत स्तर पर उनकी भागीदारी को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। अकबरपुर प्रखंड की माखर पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा में बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायत विकास दिवस केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रभावी मंच है। ग्राम सभा में लिए गए निर्णय गांव के विकास की दिशा तय करते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नवादा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय विद्यालय के लिए शोभिया स्थित चिन्हित 5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम रजिस्ट्री के माध्यम से कर दिया गया है। इसके बाद जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि विद्यालय की स्थापना संबंधी अन्य औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरी हो सकेगी। इसके बाद नवादा के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरा होने के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और हर घर जल जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाएं प्रभावी साबित हुई है। विवेक ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।
1: ये 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण का यात्रा, आज हम आगे बढ़ गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक रूपेण जो है हर पहलू को उठा गया।
0: नवादा जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत के लिए 9 व्यस्त रेलवे फाटकों पर रेल ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पथ निर्माण विभाग ने पिछले वर्ष रेलवे बोर्ड के अनुरोध पर सभी 9 प्रस्तावित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार DPR तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, गृहमंत्री अमित शाह का नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, और जानेंगे पंचायत विकास दिवस के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि एक नए अवतार के रूप में ये भारत का भाग्य गढ़ रहा है। श्री मोदी ने 2 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परम्परा को फिर से जीवित किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी और दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया।
3: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे

0: खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा करें।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए।
0: जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मन की बात कार्यक्रम को जन जन की भावनाओं का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि ये देश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है।
2: पूरे देश अलग अलग स्थानों पर जो सकारात्मक प्रयास होते हैं, उन प्रयासों को माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं पूरे देश के और दुनिया के लोग जान पाते हैं कि भारत के लोग स्वतः कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से समाज को कितना बड़ा प्रेरणा मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज जो उन्होंने एक शब्द दिया है कैच द रेन, मैं मानता हूं कि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से जलवायु संरक्षण और जल संरक्षण को एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड के टेटिया पंचायत से पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत स्तर पर इस दिवस के आयोजन से पंचायतों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
3: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया, अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई है उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिला रोजगार योजना के तहत शेष बचे लाभार्थियों को भी राशि दी जाएगी।
3: इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया, अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा, तो हम लोगों ने तय किया है जो महिलाएं छूट गई हैं उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
1: गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
4: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े

0: अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और प्रस्तुति निधि श्री, वाचन खालिद रशीद और ध्वनि अंकन राहुल कुमार।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं जब भी मेट फिल्म का ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम।

अगला गीत आइए सुनते हैं, एक था टाइगर फिल्म से, के और पलक मुच्छल की आवाज में, जिसके गीतकार हैं अनविता दत्त और संगीतकार हैं सुहेल सेन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है वेलकम फिल्म से, आनंद राज आनंद की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आनंद राज आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनजान सागरी ने।

अगला गीत हमने लिया है लव आजकल फिल्म से, नीरज श्रीधर की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, इरशाद कामिल के बोल और प्रीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आवारापन फिल्म का ये गीत सुजैन की आवाज़ में। गीतकार थे शहीद क्वेदरी और संगीतकार प्रीतम। अगला गीत हमने लिया है राज टू फिल्म का, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं हरि हरन।

0: अभी आप हरिहरन से चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के

0: देश से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बर कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।

0: मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने

0: OMG Act comes into force across the country, Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a five-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शहरों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत MG नरेगा के तहत 298.80 रुपये यौमिया से बढ़कर 327.40 रुपये यौमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। سپریم کورٹ نے آج رہنما خطوط جاری کیے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی بنیاد پر گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے متاثرین یا دعویٰ پیش کرنے والے زخمیوں کی سالانہ آمدنی کا تعین عدالتیں کس طرح کریں۔ گاڑیوں کے حادثے کی صورت میں معاوضوں میں یکسانیت لانے کی غرض سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ

0: של שחר ושקט. ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का

0: कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली, जब हमें डिजिटल पहचान मिली उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद

0: जैसा अगर कुछ बनाना है कल को तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है। गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ करके इस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
1: जी
2: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं, और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं, और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे

0: सकते हैं इसे?
1: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया है। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इससे ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेशन, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई-कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है, इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी आप सुन जी ने बात किया कि AI कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
0: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
1: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है, MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो, ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
0: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गतिशक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
0: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो

0: किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
1: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया है। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आज इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
0: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
0: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
0: कर रहे हैं हम
3: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस

0: इस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे। एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है। मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया, अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंड ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए, सरल भाषा में हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं, मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात

0: करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है। इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल। और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया। अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन करे हैं। अब
0: जी
1: ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए, जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है। पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
0: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
1: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों। क्योंकि अगर हम हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
0: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी, जरूर। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल। क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। ना कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आई

ये सबसे पहले हम सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल और राम लक्ष्मण का संगीत।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म सागर से, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आइए अब सुनते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला गीत हमने लिया है कर्ज फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में शक्ति फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ और मधुर गीतों के साथ एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो।

इस अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर हैं कुछ और मधुर गीतों के साथ आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है सिलसिला फिल्म से। आवाजें दी हैं लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म शागिर्द से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार है मजरू और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

哎呀！

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी के स्वर में। आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का ये प्यारा सा गीत, शैलेंद्र के बोल और एसडी बर्मन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आइए सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत, जिसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

अगला गीत आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म से, स्वर दिया है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अजनबी फिल्म का ये गीत। संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना

0: और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said,

0: men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chester Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः के 5:45 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।